नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फालता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द करने का असाधारण कदम उठाया है। इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को नए सिरे से वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की खबरों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन को जानबूझकर काले टेप से ढक दिया गया था, जिससे मतदान में बाधा आई। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनः मतदान हुआ। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुईं, जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। रक्षा मंत्री ने

0: कहा कि सशस्त्र बलों ने युद्ध के मैदान में और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा में साहस का प्रदर्शन किया है। उन्होंने नागरिकों से देश के गुमनाम नायकों की कहानियों और बलिदान को दूर दूर तक साझा करने का भी आग्रह किया। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उपरक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। श्री मोदी ने उनके नए कार्यकाल के बेहद उपयोगी और प्रभावशाली होने की भी कामना की है। रोहित जैन को रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। वे 3 मई 2026 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी राउरकेला कार्यक्रम प्रचार करा जाउछि एफएम बैंड रे 102.6 MHz जोगे प्रचार करुछु भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। प्रथम आसंत शुणा भजन काली मगुच तते कंठशिल्पी मीनती नाथ रचना राधामोहन षडंगी।

0: आपणंक व्यवसायरे उन्नति आणिबा पई आकाशवाणीर सहयोग नियंतु आ व्यवसायकु नै जानतु सफलतार शिखरकु।
1: आपणंक व्यवसाय स्थानीय हेउ कि राष्ट्रीय आकाशवाणी पाखरे अछि उपभोक्ताक निकटरे पहुंचिबार समस्त मार्ग।
0: घर हेउ कि ऑफिस अबा दुकान सबुठी बसि आकाशवाणीर जेकोणसी केन्द्रे विज्ञापन पई बुकिंग करि पारिबे।
1: आकाशवाणीर विभिन्न चैनल विज्ञापन देबा बहु सहज सुलभ आउ सस्ता।
0: बुकिंग पई जोगाजोग करंतु ए टेलीफोन नंबर 8700014242।
1: हां 8700014242। सुनुच भाबुची आम बिजनेस टा आउ टिके बढ़ेले केमती होंदा।
0: तमकु किए अटकौचे कि
1: केही त अटके नांदी किंतु बुझी पारुनी काहाटू साहाज्य नेबी।
0: मोठू आउ काहाटू
1: तमठू। अच्छा ताले कुह
0: एतिके जानिना आकाशवाणी अछि ना। मु सुनिची आकाशवाणी रो नेटवर्क देशर सब आड़े अछि
1: सेथरे मोर कोन लाभ हेबो।
0: देखो लाभ अछि ही अछि जो शहर को जाओ विज्ञापन माध्यम रे उपभोक्ता को पाखरे पहुंची हेबो।
1: हेले आकाशवाणी सो जोगाजोग केमिति करि हेबो।
0: खूब सहज मु कहूची प्रथमे टेलीफोन नंबर नोट करो 8700014242।
1: अच्छा 8700014242। एबे फोन लगाउची 8700014242।
2: कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी राउरकेला केन्द्र शुणुंट केतोटी भक्ति गीत वंदना कार्यक्रम परवर्ती भजन बेल मु जाऊछी बुड़ी कंठशिल्पी आरा पंडा रचना लक्ष्मीकांत महापात्रा।

रानी कैकई के कोप भवन में काल रात्रि बीत चुकी है। प्रातः काल कैकई का आदेश पाकर सुमंत्र श्री राम को वहां ले आते हैं। राजा दशरथ मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हैं। वो श्री राम से कुछ नहीं कह पाते। श्री राम ने माता कैकई से पिता की इस दशा का कारण जानकर कहा, हे माता, वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी होता है। रानी कैकई श्री राम के मनोभाव जानकर हर्षित हुईं और माता पिता तथा भाइयों के प्रति उनके आदर तथा स्नेह भाव की प्रशंसा की। बोली, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम अपने पिता को समझाकर वही करने को कहो जिससे इन्हें चौथेपन में अपयश का भागी न बनना पड़े। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और राम राम कहते हुए उन्होंने करवट ली। जब सुमंत्र ने उन्हें बताया कि राम आए हैं तो धीरज धारण कर उन्होंने आंखें खोली। स्नेह से विकल होकर उन्होंने पुत्र को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसू की धार बह चली। हृदय में लगे गहरे आघात की पीड़ा के कारण उनके मुंह से वचन नहीं निकल रहे। मन में बस बार बार सृष्टिकर्ता से यही मनाते हैं कि राम वन न जाएं। अवठरदानी शिव से उनकी विनती है कि दीन जानकर आशुतोष उनका दुख दूर करें।

चिन्मय विद्यालय इंग्राजी माध्यम छेंट राउरकेला स्वतंत्र आदर्श स्वतंत्र चिंताधारा और स्वतंत्र शिक्षा प्रदान करुथिबा एक अनन्य शिक्षानुष्ठान चिन्मय सेवा ट्रस्ट द्वारा परिचालित स्वामी चिन्मयानंदनक आदर्श से अनुप्राणित आईसीएसई बोर्ड स्वीकृति प्राप्त 34वें वर्ष रे पदार्पण करिथिबा उत्तम मनुष्य गढ़ुथिबा एक अग्रणी शिक्षानुष्ठान जेउठी सर्वांगीन शिक्षा उचित मार्गदर्शन सह पिलांक सुरक्षा सुस्थता और सर्वांगीन विकास को दिया जाए प्राथमिकता शत प्रतिशत पास हार सह श्रेष्ठ फलाफल हेउछि जहार अनन्य सफलता जेउठी 2026-27 शिक्षा वर्ष पई केजी श्रेणी रु नवम श्रेणी एवं विशेष भाव रे एकादश विज्ञान और वाणिज्य श्रेणी पर्यंत चलीछि एबे नामलेखा एवं समस्त श्रेणी रे सीमित स्थान रहिछि ताहाले आउ डेरी काहे कि केजी रु नवम और एकादश श्रेणी रे नाम लेखाइबा पई विद्यालय रो कार्यालय सह आज ही जोगाजोग करंतु समय सकाळ 8:00 रु दिन 11:00 मोबाइल नंबर 7873819988 एवं 9437109907 आउ थरे कहि दउछि मोबाइल नंबर 7873819988 एवं 9437109907 चिन्मय विद्यालय सफलतार अनन्य शिक्षालय चिन्मय विद्यालय ओडिया माध्यम सेक्टर 7 राउरकेला चिन्मय सेवा ट्रस्ट द्वारा परिचालित स्वामी चिन्मयानंदक आदर्श से अनुप्राणित ओडिशा बोर्ड स्वीकृति प्राप्त दीर्घ 47 वर्षर एक सुनामधन्य शिक्षानुष्ठान जेउठी सठिक शिक्षा सठिक मार्गदर्शन सह पिलांकर सुरक्षा सुस्थता और सर्वांगीन विकास को दिया जाए प्राथमिकता आउ 1983 मसीहा रु 2025 मसीहा पर्यंत शत प्रतिशत पास हार होउछे जहार अनन्य सफलता जेउठी 2026-27 शिक्षा वर्ष पई नर्सरी रु नवम श्रेणी पर्यंत चलीछे एबे नामलेखा आउ चिन्मय अमृत महोत्सव 2026 पालन अवसर रे शिशु बाटिकारु नवम श्रेणी पर्यंत नामलेखा निमन्ते प्रथम 100 जन प्रार्थीक पई रहिछि मध्य विशेष रियायतिर सुविधा ताहले आउ डेरी काहेकि नर्सरी रु नवम श्रेणी पर्यंत नाम लेखाइबा पई विद्यालय रो कार्यालय सह आज ही जोगाजोग करंतु समय सकाळ 8:00 रु दिन 11:00 मोबाइल नंबर 9238683735 एवं 7008173085 पुणि थरे 9238683735 एवं 7008173085 चिन्मय विद्यालय सफलतार अनन्य शिक्षालय।

0: कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
1: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
0: भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली, CBS और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों को अपनाने से आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा और प्रत्येक नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंच सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.DOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले 2 दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस 10 मई तक अपनी यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर 3 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड ध्वज के LPG टैंकर MT सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन LPG है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मस्क के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े समूह को निशाना बनाकर किए गए। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। और अब खेल खबर।

0: के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराया था। इस बीच उबर कप के फाइनल में आज चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
0: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX-2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नॉम फॉर मारियास प्रांत के शाही कंबोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों की पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है मतगणना कर्मियों के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र, आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा देश, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर को जनसत्ता ने बॉक्स में देते हुए लिखा है लगातार तीसरे महीने कीमतें बढ़ी। पत्र ने इसे संकट और चिंता बताते हुए लिखा है खाने के दाम बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 30 करोड़ से ज्यादा एंजाइटी से हैं परेशान, जिसका प्रमुख कारण ओवरथिंकिंग। समुद्र के भीतर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा, हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा ध्वज फहराकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वराज द्वीप पर गोताखोरों ने पूरा किया अभियान। पंजाब केसरी के अनुसार कश्मीर को पीछे छोड़ विदेश में धमाल मचाएगा लद्दाख का पश्मीना। पत्र कहता है कि पहले लद्दाख के चरवाहे कच्चा ऊन कम दामों पर बेच देते थे, अब कुछ बड़े बदलावों के साथ लद्दाख में ही आधुनिक संयंत्र और फिनिशिंग यूनिट लग रही है, जिससे लद्दाख के शॉल ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और एलपीजी टैंकर ने

चिन्मय विद्यालय ओडिया माध्यम सेक्टर 7 राउरकेला चिन्मय सेवा ट्रस्ट द्वारा परिचालित स्वामी चिन्मयानंदक आदर्श रे अनुप्राणित ओडिशा बोर्ड स्वीकृति प्राप्त दीर्घ 47 वर्ष रे एक सुनामधन्य शिक्षानुष्ठान जेउठी सठिक शिक्षा सठिक मार्गदर्शन सह पिलांकर सुरक्षा सुस्थता और

चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गानों के साथ हम उपस्थित हैं। तमाशा फिल्म का गाना मोहित चौहान की आवाज़, इरशाद कामिल के बोल, संगीत ए आर रहमान का।

0: दोस्तों आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इसका उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र मीडिया के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस वर्ष की जो थीम है वो है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण, यानी कि शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ पीस। ये इस वर्ष की थीम है। यूनेस्को ने 1991 में इस दिन की घोषणा की थी, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता दी गई। और ये दिन उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने का भी अवसर है जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए जान गंवाई है। तो आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इसके अलावा आज अभिनेत्री नरगिस को हम याद कर रहे हैं। नरगिस को बहुत प्रतिभावान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। फिल्मों में उनके अभिनय में हमें विविधता दिखाई देती है और उनकी उपस्थिति बहुत गरिमामय है। दिल को छू लेने वाला उनका अभिनय रहा है। जो उनकी जो फिल्में हैं उनमें हमने इस चीज़ को महसूस किया है। 1950 के दशक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से वो थी और 1948 से 1957 तक बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में वे दिखाई देती हैं। 1950 के दशक में नरगिस की साड़ियां एक बहुत प्रमुख स्टाइल स्टेटमेंट थी। वैसे तो उन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, पर मदर इंडिया फिल्म में उनका जो अभिनय है वो काफ़ी सराहा गया। महज 28 साल की उम्र में सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की माँ का जो किरदार उन्होंने निभाया है, तो वो किरदार निभाकर उन्होंने हर किसी को चौंका दिया। उनके अभिनय की बहुत तारीफ की गई इस फिल्म में। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हमारा विनम्र नमन। गीत हम आगे और सुनेंगे, उससे पहले संदेश सुनते हैं।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है चित्रलोक। अगला गाना सुनते हैं सुई धागा। इस फिल्म का गाना पेपोन और रोनकिनी गुप्ता की आवाजों में वरुण ग्रोवर का लिखा हुआ गाना, संगीत है अनु मलिक का।

ब्रेक के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं हैप्पी न्यू ईयर, इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में, इरशाद कामिल के बोल, संगीत विशाल और शेखर का।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यह जीनियस फिल्म का गाना अरिजीत सिंह की आवाज में, कुमार के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना बाजीराव मस्तानी। इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल, गणेश और साथियों की आवाज़ें, सिद्धार्थ गरिमा, नासिर फराज और गणेश का लिखा हुआ गाना, शैल, प्रीतेश और नितिन शंकर का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

नरगिसत का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की माँ थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में, जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश-ए-हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू हो गई।

जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था, वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दनबाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। चूंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया। बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की 2 फिल्में आईं। एक थी राज कपूर की फिल्म बरसात।

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही।

जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई श्री 420।

श्री 420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा।

12 के बाद राज कपूर और नरगिस की जो फिल्में आईं उनके नाम भी आपको बता दें, अनहोनी, आशियाना और उसके बाद आ

के बाद धुन, पापी और जागते रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी फिल्म थी।

कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया।

नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।

खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में ये फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली।

दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी जुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रही दत्त साहब कहाँ हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं हैं। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

सन 1958 कार्लोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से

0: पैंकियाट्रिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है। नरगिस एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन।
1: रुक सा।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थी अभिनेत्री नरगिस की, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: kapını.
1: आपणको व्यवसायरे उन्नति आणिबा पई आकाशवाणी जो सहयोग नियंतु आउ व्यवसाय को नै जंतु सफलतार शिखर को
2: आपणको व्यवसाय स्थानीय हेउ कि राष्ट्रीय आकाशवाणी पाखरे अछि उपभोक्ताक निकटरे पहुचिबार समस्त मार्ग
1: घर हेउ कि ऑफिस अबा दुकान सबुठी बसी आकाशवाणी रो जेकोनसी केन्द्र रे विज्ञापन पई बुकिंग करि परिबे
2: आकाशवाणी रो विभिन्न चैनल रे विज्ञापन देबा बहुत सहज सुलभ आउ सस्ता
1: बुकिंग पई जोगाजोग करंतु ए टेलीफोन नंबर 870-001-4242
2: हां 870-001-4242
3: सुनिचंते हिंदी सिने संगीत कार्यक्रम

0: 1993 फिल्म साहिबा।
1: कैसे जियूंगा मैं।
0: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
2: प्रचार कल केतोटे हिंदी कथाचित्रर गीत सिने संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी राउरकेला आपण मैंने ट्यून कर 102.6 FM को। परवर्ती कार्यक्रम विविध भारती किछि क्षण मध्यरे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

आइए आज सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र, वाचन स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। श्री चरण कमलेशु, आज हमारे विवाह को 15 बरस हो गए, लेकिन अभी तक मैंने कभी तुमको चिट्ठी न लिखी, सदा तुम्हारे पास ही बनी रही। न जाने कितनी बातें कहती सुनती रही, पर चिट्ठी लिखने लायक दूरी कभी नहीं मिली। आज मैं श्री क्षेत्र में तीर्थ करने आई हूँ, तुम अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोंघे के साथ शंख का होता है, वो तुम्हारे तन मन से चिपक गया है, इसलिए तुमने ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी। विधाता की यही इच्छा थी, उन्होंने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तुम्हारे घर की मछली बहू हूँ मैं, पर आज 15 बरस बाद इस समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं जान पाई हूँ कि अपने जगत और जगदीश्वर के साथ मेरा एक संबंध और भी है, इसलिए आज साहस करके ये चिट्ठी लिख रही हूँ। इसे तुम अपने घर की मछली बहू की ही चिट्ठी मत समझना। तुम लोगों के साथ मेरे संबंध की बात जिन्होंने मेरे भाग्य में लिखी थी, उन्हें छोड़कर जब इस संभावना का और किसी को पता न था, उसी शैशव काल में मैं और मेरा भाई एक साथ ही सन्निपात के ज्वर से पीड़ित हुए थे। भाई तो मारा गया, पर मैं बची रही। मोहल्ले की औरतें कहने लगीं, अरे मृणाल लड़की है ना, इसीलिए बच गई। लड़का होती तो क्या भला बच सकती थी। चोरी की कला में यमराज भी निपुण हैं, उनकी नजर कीमती चीज पर ही पड़ती है। मेरे भाग्य में मौत नहीं है, यही बात अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं ये चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। एक दिन जब दूर के रिश्ते में तुम्हारे मामा तुम्हारे मित्र नीरद को साथ लेकर कन्या देखने आए थे, तब मेरी आयु 12 वर्ष की थी। दुर्गम गाँव में मेरा घर था, जहाँ दिन में भी सियार बोलते रहे। स्टेशन से 7 कोस तक छकड़ा गाड़ी में चलने के बाद बाकी 3 मील का कच्चा रास्ता पालकी में बैठकर पार करने के बाद हमारे गांव में पहुंचा जा सकता था। उस दिन तुम लोगों को कितनी हैरानी हुई जिस पर हमारे पूर्वी बंगाल का भोजन, मामा उस भोजन की हंसी उड़ाना आज भी नहीं भूलते। तुम्हारी माँ की एक ही जिद थी कि बड़ी बहू के रूप की कमी को मझली बहू के द्वारा पूरी करें, नहीं तो भला इतना कष्ट करके तुम लोग हमारे गांव क्यों आते। पीलिया यकृत उदरशूल और दुल्हन के लिए बंगाल प्रांत में खोज नहीं करनी पड़ती, वे स्वयं ही आकर घेर लेते हैं, छुड़ाए नहीं छूटते। पिता की छाती धक धक करने लगी, माँ दुर्गा का नाम जपने लगी। शहर की देवता को गांव का पुजारी क्या देकर संतुष्ट करे, बेटी के रूप का भरोसा था, लेकिन स्वयं बेटी में उस रूप का कोई मृत्यु नहीं होता। देखने आया हुआ व्यक्ति उसका जो मूल्य दे वही उसका मूल्य होता है, इसीलिए तो 1000 रूप गुण होने पर भी लड़कियों का संकोच किसी भी तरह से दूर नहीं होता। सारे मोहल्ले का ये आतंक मेरी छाती पर पत्थर की तरह जमकर बैठ गया। आकाश का सारा उजाला और संसार की समस्त शक्ति उस दिन मानो इस 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की को 2 परीक्षकों की 2 जोड़ी आंखों के सामने कसकर पकड़ कर रखने के लिए निगरानी कर रही थी। मुझे कहीं छिपने की जगह न मिली। अपने करुण स्वर में संपूर्ण आकाश को कपाती हुई शहनाई बज उठी। मैं तुम लोगों के यहाँ आ पहुंची। मेरे सारे ऐबों का व्यवरावार हिसाब लगाकर गृहिणियों को ये स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुंदरी जरूर हूँ। ये बात सुनते ही मेरी बड़ी जेठानी का चेहरा भारी हो गया, लेकिन सोचती हूँ मुझे रूप की जरूरत ही क्या थी। रूप नामक वस्तु को अगर किसी ब्राह्मण ने गंगा मिट्टी से गढ़ा हो तो उसका आदर हो, लेकिन उसे तो विधाता ने न केवल अपने आनंद से निर्मित किया है, इसलिए तुम्हारे धर्म के संसार में उसका कोई मूल्य नहीं। मैं रूपवती हूँ, इस बात को भूलने में तुम्हें बहुत दिन लग गए, लेकिन मुझमें बुद्धि भी है, ये बात तुम लोगों को पग पग पर याद दिलानी पड़ती। मेरी ये बुद्धि इतनी प्रकृत है कि तुम लोगों की घर गृहस्थी में इतना समय काट देने पर भी वो आज भी टिकी हुई है।
मेरी इस बुद्धि से माँ बड़ी चिंतित रहती थी। नारी के लिए ये तो एक बला ही है, बाधाओं को मानकर चलना जिसका काम है, वो यदि बुद्धि को मानकर चलना चाहे तो ठोकर खा खा कर उसका सिर फूटेगा ही। लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम लोगों के घर की बहू को जितनी बुद्धि की जरूरत है, विधाता ने लापरवाही में मुझे उससे बहुत ज्यादा बुद्धि दे डाली है। अब मैं उसे लौटाऊं भी तो किसको? तुम लोग मुझे पुरखिन कहकर दिन रात गाली देते रहे। अक्षम्य को कड़ी बात कहने से ही सांत्वना मिलती है, इसीलिए

मैंने उसको क्षमा कर दिया। मेरी एक बात तुम्हारी घर गृहस्थी से बाहर थी, जिसे तुम में से कोई नहीं जानता। मैं तुम सबसे छिपाकर कविता लिखा करती थी। वो भले ही कूड़ा करकट क्यों न हो, उस पर तुम्हारे अंतःपुर की दीवार न उठ सकी। वहीं मुझे मृत्यु मिलती थी, वहीं पर मैं रो पाती थी। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। मेरे भीतर तुम लोगों की मछली बहू के अतिरिक्त जो कुछ था, उसे तुम लोगों ने कभी पसंद ही नहीं किया, क्योंकि उसे तुम लोग पहचान भी नहीं पाए। मैं कवि हूं, ये बात 15 बरस में भी तुम लोगों की पकड़ में नहीं आई। तुम लोगों के घर की प्रथम स्मृतियों में मेरे मन में जो सबसे ज्यादा जगती रहती है, वो है तुम लोगों की गौशाला। अंतःपुर को जाने वाले जीने के बगल के कोठे में तुम लोगों की गौवें रहती हैं। सामने के आंगन को छोड़कर उनके हिलने डुलने के लिए और कोई जगह नहीं थी। आंगन के कोने में गायों को भूसा देने के लिए काठ की नींद थी। सवेरे नौकर तरह तरह के काम करते रहते, इसलिए भूखी गायें नांद के किनारों को चाट चाट कर चबा चबा कर खुरच देती, और मेरा मन इसे देखकर रोने लगता था। और मैं गांव गवई की बेटी, जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर में आई, उस दिन उस बड़े शहर के बीच मुझे वे दो गायें और 3 बछड़े चिरपरिचित आत्मीय जैसे जान पड़े। जितने दिन मैं रही बहू रही, खुद न खाकर छिपा छिपा कर मैं उन्हें खिलाती रही। जब बड़ी हुई तब गौओं के प्रति मेरी प्रत्यक्ष ममता देखकर मेरे साथ हंसी मजाक का संबंध रखने वाले लोग मेरे गोत्र के बारे में संदेह प्रकट करते रहे। मेरी बेटी जन्मते ही मर गई। जाते समय उसने साथ चलने के लिए मुझे भी पुकारा था। अगर वो बच्ची रहती तो मेरे जीवन में जो कुछ महान है, जो कुछ सत्य है, वो सब मुझे ला देती। तब मैं मछली बहू से एकदम माँ बन जाती। गृहस्थी में बंधी रहने पर भी माँ विश्व भर की माँ होती है। पर मुझे माँ होने की वेदना ही मिली, सिर्फ वेदना। मातृत्व की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। मुझे याद है अंग्रेज डॉक्टर को हमारे घर का भीतरी भाग देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था, और जच्चा घर देखकर नाराज होकर उसने डांट फटकार भी लगाई थी। सदर में तो तुम लोगों का छोटा सा बाग है, कमरे में भी साज श्रृंगार की कोई कमी नहीं, पर भीतर का भाग मानो पश्मीने के काम की उल्टी परत हो। वहां न कोई लज्जा है, न सौंदर्य, न श्रृंगार। उजाला वहां टिमटिमाता रहता है, हवा चोर की भांति प्रवेश करती है, आंगन का कूड़ा करकट हटने का नाम ही नहीं लेता। फर्श और दीवार पर कालिमा अक्षय बनकर विराजती है। लेकिन डॉक्टर ने एक भूल की थी, उसने सोचा था कि शायद इससे हमको रात दिन दुख होता होगा। बात बिल्कुल उल्टी है। अनादर नाम की चीज राख की तरह होती है, वो शायद भीतर ही भीतर आग को बनाए रहती है, लेकिन ऊपर से उसके ताप को प्रकट नहीं होने देती। जब आत्मसम्मान घट जाता है तब अनादर में अन्याय भी नहीं दिखाई देता, इसीलिए उसकी पीड़ा नहीं होती। यही कारण है कि नारी दुख का अनुभव करने में ही लज्जा पाती है। इसीलिए मैं कहती हूं, अगर तुम लोगों की व्यवस्था यही है
कि नारी दुख को पाना ही होगा तो फिर जहां तक संभव हो उसे अनादर में रखना ही ठीक है। हाँ, आदर से दुख की व्यथा और बढ़ जाती है। तुम मुझे चाहे जैसे रखते रहे, मुझे दुख है। ये बात कभी मेरे ख्याल में ही नहीं आई। घर में जब सिर पर मौत मंडराने लगी थी तब भी मुझे कोई डर नहीं लगा। हमारा जीवन ही क्या है कि मौत से डरना पड़े। जिनके प्राणों को आदर और यत्न से कसकर बांध लिया गया हो, मरने में उन्हीं को कष्ट होता है। उस दिन अगर यमराज मुझे घसीटने लगते तो मैं उसी तरह उखड़ आती जिस तरह पोली जमीन से घास बड़ी आसानी से जड़ समेत खींच आती है। बंगाल की बेटी तो बात बात में मरना चाहती है, लेकिन इस तरह मरने में कौन सी बहादुरी है भला। हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरते लज्जा आती है। मेरी बेटी संध्या तारा की तरह क्षण भर के लिए उदित होकर अस्त हो गई। मैं फिर से अपने दैनिक कामों में और गाय बछड़ों में लग गई। इसी तरह मेरा जीवन आखिर तक जैसे तैसे कट जाता। आज तुम्हें ये चिट्ठी लिखने की जरूरत न पड़ती। लेकिन कभी कभी हवा एक मामूली सा बीज उड़ा कर ले जाती है और पक्के दालान में पीपल का अंकुर फूट उठता है और होते होते उसी से लकड़ी पत्थर की छाती विदीर्ण होने लग जाती है। मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में भी जीवन का एक छोटा सा कण न जाने कहां से उड़कर आ पड़ा। तभी से दरार शुरू हो गई।

जब विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार के मारे एक दिन हमारे घर में दीदी के पास आश्रय लिया था, तब तुम लोगों ने सोचा था ये कहाँ की बला आ गई है ना? देखा, तुम लोग सब मन ही मन खींच उठे हो, इसलिए ना कि उस निराश्रिता लड़की को घेर कर मेरा संपूर्ण मन एकाएक जैसे कमर बांध कर खड़ा हो गया हो। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान है। यहाँ ये अपमान भी जिसे विवश होकर स्वीकार करना पड़ा हो, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है? हाँ, बाद में मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है, तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई बड़ी बला आ पड़ी हो। उन्हें इतना साहस न हुआ कि वे अपनी अनाथ बहन के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सकें। वे पतिव्रता थीं, पतिव्रता। उनका ये संकट देखकर मेरा मन और भी दुखी हो उठा। मैंने देखा, बड़ी जेठानी ने खास तौर से सबको दिखा दिखा कर बिंदु के खाने पहनने की ऐसी रद्दी व्यवस्था की और उसे घर में इस तरह नौकरानियों के से काम सौंप दिए कि मुझे दुख ही नहीं, लज्जा भी हुई। मैं सबके सामने इस बात को प्रमाणित करने में लगी रहती थी कि हमारी गृहस्थी को बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है। ढेरों काम करती है, फिर भी खर्च की दृष्टि से बेहद सस्ती है। मेरी बड़ी जेठानी के पितृवंश में कुल के अलावा और कोई बड़ी चीज न थी, न रूप था न धन। किस तरह मेरे ससुर के पैरों पड़ने पर तुम लोगों के घर में उनका ब्याह हुआ था, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वे सदा यही सोचती रहीं कि उनका विवाह तुम्हारे वंश के प्रति बड़ा भारी अपराध था, इसीलिए वे सब बातों में अपने आप को भरसक दूर रखकर अपने को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी जगह में सिमट कर रहती थीं। लेकिन उनके इस प्रशंसनीय उदाहरण से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती रही। मैं अपने आप को हर तरफ से इतना बेहद छोटा नहीं बना पाती। मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ उसे किसी और की खातिर बुरा समझने को मैं उचित नहीं मानती। इस बात के तुम्हें भी बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीट लाई। जीजी कहने लगी, मझली बहू गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर देगी। वे सबसे मेरी इस ढंग से शिकायत करती फिरती थीं, मानो मैंने कोई अपराध कर दिया हो। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वे मन ही मन सोचती थीं कि चलो जान बची, अब अपराध का बोझ मेरे सिर पर पड़ने लगा। वे अपनी बहन के प्रति खुद जो स्नेह नहीं दिखा पाती थीं, वही मेरे द्वारा प्रकट करके उनका मन हल्का हो जाता। तुम्हें तो मालूम है, देखने में वो इतनी कुरूप थी कि अगर वो फर्श पर गिरकर अपना सिर फोड़ लेती तो भी लोगों को घर के फर्श की ही चिंता होती। और यही कारण है कि माता पिता के ना होने पर ऐसा कोई न था जो उसके विवाह की सोचता। और ऐसे लोग भी भला कितने थे जिनके प्राणों में इतना बल हो कि उससे ब्याह कर सके। बिंदु बहुत डरती डरती मेरे पास आई, मानो संसार में उसको जन्म लेने का कोई अधिकार ही न था। इसीलिए वो हमेशा अलग हटकर आंख बचाकर चलती। उसके पिता के यहाँ उसके चचेरे भाई उसके लिए ऐसा एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहते थे जिसमें वो फालतू चीज की तरह पड़ी रह सके। जो भी हो, वे लोग थे खूब। यही कारण है कि जब मैं बिंदु को अपने कमरे में बुला लाई तो उसकी छाती धक धक करने लगी। उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह है, ये बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई। लेकिन मेरा कमरा एक मेरा ही कमरा तो नहीं था, इसलिए मेरा काम आसान नहीं हुआ।
आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। मेरे पास दो चार दिन रहने पर ही उसके शरीर में न जाने लाल लाल क्या निकल आया, शायद घमौरी रही होगी या ऐसा ही कुछ होगा। तुमने कहा शीतला, क्यों न हो, वो बिंदु थी ना। तुम्हारे मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया, दो एक दिन और देखे बिना ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दो एक दिन तक धीरज किसको होता। बिंदु तो अपनी बीमारी की लज्जा से ही मरी जा रही थी। मैंने कहा शीतला है तो है, इसमें क्या, मैं उसे अपने जच्चा घर में लिवा ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बात पर जब तुम सब लोग मेरे ऊपर भड़क कर क्रोध की मूर्ति बनकर गए, यही नहीं, जब बिंदु की जीजी भी बड़ी परेशानी दिखाती हुई उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी, तभी उसके शरीर के वे सारे लाल लाल दाग एकदम विलीन हो गए। मैंने देखा कि इस बात से तुम लोग और भी व्यग्र हो उठे। कहने लगे, अब तो वाकई शीतला बैठ गई है। क्यों? क्योंकि वो बिंदु थी ना। अनादर के पालन पोषण में एक बड़ा गुण है, शरीर को वो एकदम अजर अमर कर देता है, बीमारी आने का नाम नहीं लेती। मरने के सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, इसीलिए रोग उसके साथ मजाक करके चला गया। हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार में ज्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना ही सबसे कठिन है। आश्रय की आवश्यकता उसको जितनी अधिक होती है, आश्रय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती हैं। बिंदु के मन से जब मेरा डर जाता रहा, तब उसको एक और कुग्रह ने पकड़ लिया। वो मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा। स्नेह की ऐसी मूर्ति तो संसार में पहले कभी नहीं देखी। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने रूप की बात याद आती। अब इतने दिनों बाद ये कुरूप लड़की मेरे उस रूप के पीछे पड़ गई। दिन रात मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कहती, जी जी, तुम्हारा ये मुंह

मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाता। जिस दिन मैं स्वयं ही अपने केश बांध लेती, उस दिन वो बहुत रूठ जाती। अपने हाथों से मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कहीं दावत में जाने के अतिरिक्त और कभी मुझे साज श्रृंगार की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन बिंदु मुझे तंग कर करके थोड़ा बहुत सजाती रहती। वो लड़की मुझे लेकर बिल्कुल पागल हो गई थी। तुम्हारे घर के भीतरी हिस्से में कहीं रत्ती भर भी मिट्टी ना थी। उत्तर की ओर की दीवार में नाली के किनारे न जाने कैसे एक गाब का पौधा निकला। जिस दिन देखती कि उस गाब के पौधे में नई लाल लाल कोपले निकल आई हैं, उसी दिन जान पड़ता कि धरती पर बसंत आ गया है। और जिस दिन मेरी घर गृहस्थी में जुटी हुई इस अनाहत लड़की के मन का और छोर किसी तरह रंग उठा, उस दिन मैंने जाना कि हृदय के जगत में भी बसंत की हवा बहती है। बिंदु के स्नेह के दुसह वेग ने मुझे अधीर कर डाला था। मैं मानती हूँ कि मुझे कभी कभी उस पर क्रोध आ जाता, लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक ऐसा रूप देखा जो जीवन में मैं पहले कभी नहीं देख पाती थी। वही मेरा मुख्य स्वरूप है। इधर मैं बिंदु जैसी लड़की को जो इतना लाड़ प्यार करती थी, ये बात तुम लोगों को बड़ी ज्यादती लगी। इसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे से बाजू बंद चोरी हुआ, उस दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा ना आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप में बिंदु का हाथ है। जब स्वदेशी आंदोलनों में लोगों के घर की तलाशियां होने लगी, तब तुम लोग अनायास ही ये संदेह कर बैठे कि बिंदु पुलिस द्वारा रखी गई स्त्री गुप्तचर है। इसका और कोई प्रमाण न था। प्रमाण बस इतना ही था कि वो बिंदु थी। तुम लोगों के घर की दासियां उनका कोई भी काम करने से इनकार कर देती थी। उनमें से किसी से अपने काम के लिए कहने में वो लड़की भी संकोच के मारे जड़वत हो जाती थी। इन्हीं सब कारणों से उसके लिए मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने खास तौर से अलग से एक दासी रख ली। ये बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी। बिंदु को पहनने के लिए मैं जो कपड़े देती थी, उन्हें देखकर तुम इतने क्रुद्ध हुए कि तुमने मेरे हाथ खर्च के रुपए ही बंद कर दिए। दूसरे ही दिन से मैंने 125 जोड़े की मोटी कोरी मिल की धोती पहनना शुरू कर दिया। और जब मोती की माँ मेरी जूठी थाली उठाने के लिए आई, तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने खुद जूठा भात बछड़े को खिलाने के बाद आंगन के नल पर जाकर बर्तन मल लिए। एक दिन एकाएक इस दृश्य को देखकर तुम प्रसन्न न हो सके। मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है, पर तुम लोगों की खुशी के बिना नहीं चल सकता। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। एक बात याद करके मुझे आश्चर्य होता रहा है कि तुम लोगों ने बिंदु को जबरदस्ती अपने घर से विदा क्यों नहीं कर दिया। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। विधाता ने मुझे बुद्धि दी है। भीतर ही भीतर इस बात को माने बगैर तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता था। अंत में अपनी शक्ति से बिंदु को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापति देवता की शरण ली।

बिंदु का वर ठीक हुआ। बड़ी जेठानी बोली, जान बची, माँ काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती, तुम्ही लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों से लिपट कर रोने लगी थी, बोली थी, जी जी जी, मेरा ब्याह क्यों करवा रही हो भला, बोलो। मैंने उसे समझाते बुझाते कहा था, बिंदु डर मत, मैंने सुना है तेरा वर बहुत अच्छा है। बिंदु बोली थी, अगर वर अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आ सके। लेकिन

0: वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का नाम भी न लिया। बड़ी जीजी इससे बड़ी निश्चिंत हो गई, लेकिन बिंदु रात दिन रोती रही, चुप होने का नाम ही न लेती थी। उसको क्या कष्ट है ये मैं जानती थी। बिंदु के लिए मैंने घर में बहुत बार झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए ये बात कहने का साहस नहीं होता था। कहती भी किस बल पर, मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती। एक तो लड़की, उस पर काली, जिसके यहाँ जा रही है वहाँ उसकी क्या दशा होगी। इन बातों की चिंता न करना ही अच्छा था। सोचती तो प्राण कांप उठते। बिंदु ने कहा, जी जी ब्याह के अभी 5 दिन और हैं, इस बीच क्या मुझे मौत नहीं आएगी। मैंने उसे खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन मिलता। ब्याह के एक दिन पहले बिंदु ने अपनी जीजी के पास जाकर कहा, जीजी मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी वही करूंगी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, मुझे इस तरह मत धकेलो मुझे। कुछ दिनों से जीजी की आंखों से चोरी चोरी आंसू झर रहे थे, उस दिन भी झरने लगे। लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं होता, शास्त्र भी तो है। उन्होंने कहा, बिंदु जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। असली बात तो ये थी कि कहीं कोई रास्ता ही न था। बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती थी कि विवाह हमारे ही घर से हो, लेकिन तुम लोग कह बैठे वर के ही घर में हो। उनके कुल की यही रीति है। मैं समझ गई, बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भी भांति नहीं सह सकेंगे, इसलिए चुप रह जाना पड़ा। लेकिन एक बात तुम में से कोई नहीं जानता, जीजी को बताना चाहती थी पर फिर बताई नहीं, नहीं तो वे डर से मर जाती। मैंने अपने थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया था। सोचा था जीजी की नजर में तो जरूर ही पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने जैसे देखकर भी नहीं देखा। दुहाई दी धर्म की, इसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर देना। जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर बोली, जीजी तो क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम त्याग दिया। मैंने कहा, नहीं बिंदु, तुम चाहे जैसे हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें कभी नहीं त्याग सकती। 3 दिन बीते, तुम्हारे तालुके के लोगों ने तुम्हें खाने के लिए जो दिया था उसे मैंने तुम्हारे जठराग्नि से बचाकर नीचे वाले कोयले की कोठरी के एक कोने में रख दिया था। सवेरे उठते ही मैं खुद जाकर उसको दाना खिला आती। 2-1 दिन तुम्हारे नौकरों पर भरोसा करके देखा, उसे खिलाने की बजाय उनका झुकाव उसी को खा जाने की ओर ज्यादा था। उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा बिंदु एक कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई है। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। मुझे देखते ही वो मेरे पैर पकड़कर चुपचाप रोने लगी। बिंदु का पति पागल था। सच कह रही है बिंदु, बोलना।
1: दीदी तुम्हारे सामने क्या मैं इतना झूठ बोल सकती हूँ। दीदी वो पागल है, वो पागल है। इस विवाह में ससुर की सहमति नहीं थी, लेकिन मेरी सास से यमराज की तरह वे सब डरते थे। ब्याह के पहले ही वे काशी चल दिए थे। सास ने जिद करके अपने लड़के का ब्याह कर लिया।
0: मैं वहीं कोयले के ढेर पर बैठ गई। स्त्री पर स्त्री को दया नहीं आती। कहती है, कोई लड़की थोड़ी ही है, लड़का पागल है तो हो, है तो पुरुष ना, है तो पुरुष। देखने में बिंदु का पति पागल नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उन्माद चढ़ता कि उसे कमरे में ताला बंद करके रखना पड़ता। ब्याह की रात वो ठीक था, लेकिन रात में जगते रहने के कारण और इसी तरह के और झंझटों के कारण दूसरे दिन से उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। बिंदु दोपहर को पीतल की थाली में भात खाने बैठी थी, अचानक उसके पति ने भात समेत थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। न जाने क्यों अचानक उसको लगा मानो बिंदु रानी सस्मणि हो। नौकर ने हो न हो चोरी से उसी के सोने के थाल में रानी के खाने के लिए भात दिया हो, इसीलिए उसे क्रोध आ गया था। बिंदु तो डर के मारे मरी जा रही थी। तीसरी रात को जब उसकी सास ने उससे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो बिंदु के प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता था तो होश में नहीं रहती थी, वो भी पागल ही थी लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात उसके पति का मिजाज ठंडा था, लेकिन डर के मारे बिंदु का शरीर पत्थर हो गया था। पति जब सो गए तब काफी रात बीतने पर वो किसी तरह चतुराई से भाग कर चली आई। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। मैंने कहा, इस तरह धोखे के ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता। बिंदु, तू जैसे रहती थी वैसे ही मेरे पास रह, देखूं तुझे कौन ले जाता है यहां से। तुम लोगों ने कहा, बिंदु झूठ बोलती है। मैंने कहा, वो कभी झूठ नहीं बोलती। फिर तुम लोगों ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम। फिर मैंने कहा, मैं अच्छी तरह से जानती हूं बिंदु झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने डर दिखाया, अगर बिंदु के ससुराल वालों ने पुलिस केस कर दिया तो आफत में पड़ जाएंगे हम। मैंने कहा, क्या अदालत ये बात नहीं सुनेगी कि उसका ब्याह धोखे से पागल वर के साथ कर दिया गया है। तुमने कहा था, तो क्या इसके लिए अदालत जाएंगे हम। हाँ, हमें ऐसी क्या गरज पड़ी है। जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेचकर करूंगी। तुम लोगों ने फिर कहा था, क्या वकील के घर तक दौड़ोगी। हाँ, इस बात का क्या जवाब होता। सिर ठोकने के अलावा और कर भी क्या सकती थी मैं। उधर बिंदु के ससुराल से उसके जेठ ने आकर बाहर बड़ा हंगामा खड़ा किया। कहने लगा, थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मैं नहीं जानती मुझ में क्या शक्ति थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों के डर से कसाई के हाथों से छूटकर मेरा आश्रय लिया हो, उसे पुलिस के डर से फिर उस कसाई को लौटाना पड़े, ये बात मैं किसी भी तरह से मान नहीं सकती थी। मैंने हिम्मत करके कहा, करने दो थाने में रिपोर्ट, देखती हूं मैं। इतना कहकर मैंने सोचा कि अब बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर कमरे में ताला लगाकर बैठ जाऊं, लेकिन खोजा तो बिंदु का कहीं पता नहीं। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी उसी समय बिंदु ने स्वयं बाहर निकलकर अपने जेठ को आत्मसमर्पण कर दिया था। वो समझ गई थी कि अगर वो इस घर में रही तो बड़ी आफत में पड़ जाऊंगी मैं। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और भी बढ़ा लिया। उसकी सास का तर्क था कि उनका लड़का उसको खाए तो नहीं जा रहा था ना, संसार में बुरे पति के उदाहरण दुर्लभ नहीं है, उनकी तुलना में तो उनका लड़का सोने का चांद था। मेरी बड़ी जेठानी ने कहा, जिसका भाग्य ही खराब हो उसके लिए रोने से क्या फायदा भला। संसार भर में कायरता के इस सबसे अधम आख्यान का प्रचार करते हुए तुम लोगों के पुरुष मन को कभी तनिक भी संकोच नहीं हुआ, इसलिए मानव जन्म पाकर भी तुम लोग बिंदु के व्यवहार पर क्रोध कर रहे थे, उसे तुम्हारा सिर नहीं झुका। बिंदु के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मेरी लज्जा का अंत न था। मैं तो गांव की लड़की थी जिस पर तुम लोगों के घर आ पड़ी, फिर भगवान ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धि दे दी। धर्म संबंधी तुम लोगों की ये चर्चा मुझे किसी भी प्रकार सहन नहीं हुई।

मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ता था। तुम तो जानते ही हो, तरह तरह से वॉलेंटियरी करना, प्लेग वाले मोहल्लों में चूहे मारना, दामोदर में बाढ़ आ जाने की खबर सुनकर दौड़ पड़ना, इन सब बातों में उसका इतना उत्साह था कि एफए की परीक्षा में लगातार दो बार फेल होने पर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मैंने उसे बुलाकर कहा, शरद जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतजाम तुझे ही करना पड़ेगा। बिंदु को मुझे चिट्ठी भेजने का साहस नहीं होगा, वो भेजे भी तो मुझे मिल नहीं सकेगी। शरद के साथ बातचीत कर रही थी तभी तुमने मेरे कमरे में आकर कहा, तुम फिर ये क्या बखेड़ा खड़ा कर रही हो? मैंने कहा, वही जो शुरू से करती आई हूं जब से तुम्हारे घर आई हूं। लेकिन नहीं, वो तो तुम्ही लोगों की कीर्ति है ना। तुमने पूछा, बिंदु को लाकर फिर कहीं छिपा रखा है क्या तुमने? मैंने कहा था, बिंदु अगर आती तो मैं जरूर छिपा कर रख लेती, लेकिन वो अब नहीं आएगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे यहाँ आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं है। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नज़र है, अगर कभी किसी राजनीतिक मामले में फंस गया तो तुम्हें भी फंसा डालेगा। इसीलिए मैं भैया दूज का तिलक भी आदमी के हाथों उसी के पास भिजवा देती थी, अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमसे सुना कि बिंदु फिर भाग गई है, इसीलिए उसका जेठ हमारे घर उसे खोजने आया है। सुनते ही मेरी छाती में शूल चुभ गया। अभागिनी का असह्य कष्ट तो मैं समझ गई, पर फिर भी कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। शरद पता करने दौड़ा। शाम को लौटकर उसने मुझसे बोला, बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर उसी वक्त उसे फिर ससुराल पहुँचा दिया। इसके लिए उन्हें हर जाने का और गाड़ी के किराए का जो दंड भोगना पड़ा उसकी खार अब भी उनके मन से नहीं गई है। श्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहाँ आकर ठहरी। मैंने तुमसे कहा, मैं भी जाऊंगी। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति ये श्रद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपत्ति नहीं की। तुम्हें इस बात का भी ध्यान था कि अगर मैं कलकत्ता में रही तो फिर किसी न किसी दिन बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूंगी। मेरे मारे तुम्हें बड़ी परेशानी थी। मुझे बुधवार को चलना था, रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद को बुलाकर कहा, जैसे भी हो बुधवार को पूरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना पड़ेगा। शरद का चेहरा खिल उठा था। वो बोला, डर की कोई बात नहीं जीजी, मैं उसे गाड़ी में बिठाकर पुरी तक चला चलूंगा। इसी बहाने जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। उसी दिन शाम को शरद फिर आया। उसका मुंह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्या बात है शरद, शायद कोई रास्ता नहीं निकला? वो बोला, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने पूछा, क्या उसे राजी नहीं कर पाए? उसने कहा, जी जी अब जरूरत भी नहीं है। कल रात अपने कपड़ों में आग लगाकर वो आत्महत्या करके मर गई। चलो छुट्टी मिले। बिंदु! गांव भर के लोग चीख उठे, कहने लगे, लड़कियों का कपड़ों में आग लगाकर मर जाना तो अब एक फैशन सा हो गया है। तुम लोगों ने कहा, अच्छा नाटक है। ऐसा ही था बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन जीवित रही तनिक भी यश नहीं मिल सका, न रूप का न गुण का। मरते वक्त भी ये नहीं हुआ कि सोच समझकर कुछ ऐसे नए ढंग से मरती कि दुनिया भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया। बिंदु

आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। जीजी कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी, लेकिन उस रोने में जैसे एक सांत्वना थी। कुछ भी सही, जान तो बची, मर गई, यही क्या कम है। अगर बची रहती तो न जाने क्या क्या हो जाता। मैं तीर्थ में आ पहुंची हूं, बिंदु के आने की तो जरूरत ही न रही, लेकिन मुझे जरूरत थी। लोग जिसे दुख मानते हैं, वो तुम्हारी गृहस्थी में मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हारे यहां खाने पहनने की कोई कमी नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र चाहे जैसा हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं जिसके लिए विधाता को बुरा कह सकूं। वैसे अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बड़े भाई की तरह भी होता तो भी शायद मेरे दिन करीब करीब ऐसे ही कट जाते और मैं अपनी सती साध्वी बड़ी जेठानी की तरह पति देवता को दोष देने की बजाय विश्व देवता को ही दोष देने की चेष्टा करती। इसलिए मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी चिट्ठी का कारण ये नहीं है, लेकिन मैं अब माखन बड़ाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौटकर नहीं जाऊंगी। मैं बिंदु को देख चुकी हूं। इस संसार में नारी का सच्चा परिचय क्या है ये मैं पा चुकी हूं। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और फिर मैंने ये भी देखा है कि वो लड़की ही क्यों न हो, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया। उस पर तुम लोगों का चाहे कितना ही जोर क्यों न रहा हो, वो उसका अंत नहीं था। वो अपने अभागे मानव जीवन से बड़ी थी। तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं थे कि तुम मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उनसे दबाकर रख सकते। मृत्यु तुम लोगों से भी बड़ी है, अपनी मृत्यु में वो महान है। वहां बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है, केवल चचेरे भाइयों की बहन नहीं है, केवल किसी अपरिचित पागल पति की प्रवंचिता पत्नी नहीं है। वहां वो अनंत है। मृत्यु की उस वंशी का स्वर उस बालिका के भग्न हृदय से निकलकर जब मेरे जीवन की यमुना के पास बजने लगा तो पहले पहल मानो मेरी छाती में कोई वाण बिंध गया हो। मैंने विधाता से प्रश्न किया, भगवन, इस संसार में जो सबसे अधिक तुच्छ है वही सबसे अधिक कठिन क्यों है? इस गली में चार दीवारी से घिरे इस निरानंद स्थान में ये जो तुच्छतम बुदबुद है वो इतनी भयंकर बाधा कैसे बन गया? तुम्हारा संसार अपनी षठ नीतियों से क्षुधा पात्र को संभाले कितना ही क्यों न कोई पुकारे, मैं उस अंतापुर की जरा सी चौखट को क्षण भर के लिए भी पार क्यों नहीं कर सकी? ऐसे संसार में ऐसा जीवन लेकर मुझे इस अत्यंत तुच्छ काठ पत्थर की आड़ में ही तिल तिल कर क्यों मरना होगा भला? क्यों? कितनी तुच्छ है ये मेरी प्रतिदिन की जीवन यात्रा, इसके बंधे नियम, बंधे अभ्यास, बंधी हुई बोली, बंधी हुई मार, सब कुछ कितनी तुच्छ है। फिर भी क्या अंत में दीनता के उस नागपाश बंधन की जीत होगी? और तुम्हारे अपने इस आनंद लोक की, इस सृष्टि की हार? लेकिन मृत्यु की बंसी बजने लगी। कहाँ गई राजमिस्त्रियों की बनाई हुई वो दीवार? कहाँ गया तुम्हारे घोर नियमों से बंधा वो कांटों का घेरा? कौन सा है वो दुख, कौन सा है वो अपमान जो मनुष्य को बंदी बनाकर रख सकता है? ये लो, मृत्यु के हाथ में जीवन की जय पताका उड़ रही है। अरे मझली बहू, तुझे डरने की अब कोई जरूरत नहीं। मझली बहू के इस तेरे खोल को छिन्न होते एक निमेश भी नहीं लगा।
तुम्हारी गली का अब मुझे कोई डर नहीं। आज मेरे सामने नीला समुद्र है, मेरे सिर पर आषाढ़ के बादल। तुम लोगों की रीति नीति के अंधेरे ने मुझे अब तक ढक के रखा था। बिंदु ने आकर क्षण भर के लिए उस आवरण के छेद में से मुझे देख लिया। वही लड़की, अपने मृत्यु द्वारा सिर से पैर तक मेरा वो आवरण उघाड़ दिया। आज बाहर आकर देखती हूँ, अपना गौरव रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। मेरा ये अनाहत रूप, जिनकी आंखों को भाया है, वे सुंदर आज संपूर्ण आकाश से मुझे निहार रहे हैं। अब मछली बहू की खैर नहीं, तुम सोच रहे होगे मैं मरने जा रही हूँ। नहीं, डरने की कोई बात नहीं। तुम लोगों के साथ मैं ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। मीराबाई भी तो मेरी ही तरह नारी थी, उनकी जंजीरें भी तो कम भारी नहीं थी। मीराबाई ने अपने गीत में कहा था, बाप छोड़े माँ छोड़े जहाँ कहीं भी जो भी हैं सब छोड़ें, लेकिन मीरा की लगन वहीं रहेगी प्रभु। अब जो होना है सो ये लगन ही तो जीवन है। मैं अभी जीवित रहूंगी, मैं बच गई हूँ, जीवित रहूंगी। तुम लोगों के चरणों के आश्रय से छूटी हुई मैं जीवित रहूंगी।

इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
1: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
0: जिंदगी की राहें उन्हें ले आई फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
2: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981 बसेरा।
3: जहां पे सवेरा हो बसेरा वही है।
0: 1984 दुनिया।
2: तू चांद नगर की शहजादी मैं जिस धरती का बन जाए।
0: 1993 फिल्म साहिबा।
2: कैसे जियो
0: मंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
3: नजरों से कह दो प्यार।
0: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी राउरकेला श्रोताबंधु कार्यक्रम प्रचार करा जाउछि 102.6 MHz जोगे प्रचार करुछि नारी महल कार्यक्रम। कार्यक्रम प्रयोजनारे बसंत कुमार स्वाई, उपस्थापनारे सत्यभामा पति। तेबे कार्यक्रम आरंभ करबा पूर्वरु नैजिबे एक छोट विरति।
2: आपणको व्यवसायरे उन्नति आणिबा पई आकाशवाणीर सहयोग नियंतु आउ व्यवसायको नैजांतु सफलतार शिखरको।
3: आपणको व्यवसाय स्थानीय हेउ कि राष्ट्रीय आकाशवाणी पाखरे अछि उपभोक्ताको निकटरे पहुँचिबार समस्त मार्ग।
2: घर हेउ कि अफिस अबा दोकान सबुठी बसि आकाशवाणीर जेकोनसे केन्द्रले विज्ञापन पई बुकिंग करि परिबे।
3: आकाशवाणीर विभिन्न च्यानलले विज्ञापन देबा बहु सहज सुलभ आउ सस्ता।
2: बुकिंग पई जोगाजोग करंतु ए टेलीफोन नंबर 8700001 4242।
3: हाँ 8700001 4242।

0: आग फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया, स्वर शमशाद बेगम का था, बेजाद लखनवी के बोल थे, राम गांगुली का संगीत। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले ये संदेश।
1: आएगी जरूर,
2: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सलिल चौधरी के संगीत से सजा ये गाना आपने सुना, प्रेम धवन के बोल थे, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर, फिल्म थी जागते रहो।

शैलेंद्र की रचना आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर का स्वर था। फिल्म का नाम रात और दिन। अब आवारा फिल्म के गाने की ओर बढ़ते हैं। हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत है और आवाज़ लता मंगेशकर की।

अंदाज फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल नौशाद अली की तर्ज। और अब अगले गाने में भी नौशाद अली की तर्ज है, लेकिन इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने, स्वर शमशाद बेगम और साथियों के, फिल्म का नाम बाबुल। यही है आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अभिनेत्री नरगिस की फिल्मों के गीत।

बाबुल फिल्म का ये गाना था आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आपने सुने अभिनेत्री नरगिस पर फिल्माए गए फिल्मों के गाने।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी हाजिर होते हैं सुरीला सफर के साथ।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत। तो चलिए आज का टेक्स्ट, आज की इबारत आपको बता दी जाए। आज हमने एक टेक्स्ट पोस्ट किया और वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। तपती गर्मी के बीच दिल ठंडी हवा की हल्की सी छुवन के लिए तरसने लगता है और उसी में छुपा होता है रिमझिम सावन का इंतजार, जहाँ कतरा कतरा पानी की बूंदें किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आती हैं। इन्हीं बदलते मौसमों के रंगों में मुलाकात के पल और भी खास हो जाते हैं। कभी तपती धूप में छांव का एहसास, तो कभी सावन की बारिश में भीगी हुई सी मुस्कुराहट, जैसे मौसम भी किसी अपने के मिलने की कहानी कह रहा हो। तो भाई, इसी में से हमने कुछ शब्द चुने हैं। अब आपको पहचानने हैं वो शब्द और उनसे जुड़े गीत। देखते हैं हमारी आपकी पसंद कितनी और कहां तक मिलती है। वैसे अभी मैं इस टेक्स्ट को एक बार और पढ़कर आपको बताऊंगी

और थोड़ा सा उन शब्दों पे जोर भी दूंगी ताकि आपके लिए और भी सहूलियत हो जाए। आपको बता दें, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं शेफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। तो भाई ये धुन बज गई और एक लिसनर हमारी लिखती हैं कि आज लिसनर्स ये भी नोटिस करेंगे कि न्यू प्रोग्राम में बैकग्राउंड म्यूजिक दिल तो पागल है की जगह कौन सा सुनाई देगा। तो भाई हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि प्रोग्राम नया है लेकिन हमारा अंदाज वही रहेगा। एक साथी ने लिखा है कि हम भी एक सुहाने सफर में हैं और रास्ते से कमेंट कर रहे हैं, प्रकृति के बीच विविध भारती का साथ, मधुर संगीत आनंद ही आनंद है। तो चलिए एक बार उस टेक्स्ट को मैं फिर से पढ़ती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। तपती गर्मी के बीच दिल ठंडी हवा की हल्की सी छुवन के लिए तरसने लगता है और उसी में छुपा होता है रिमझिम सावन का इंतजार, जहाँ कतरा कतरा पानी की बूंदें किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आती हैं। इन्हीं बदलते मौसमों के रंगों में मुलाकात के पल और भी खास हो जाते हैं। कभी तपती धूप में छांव का एहसास, तो कभी सावन की बारिश में भीगी हुई सी मुस्कुराहट, जैसे मौसम भी किसी अपने के मिलने की कहानी कह रहा हो। तो चलिए अब आप समझ ही गए होंगे और आज भाई दिल की बातें हो रही हैं तो क्यों ना की जाएं। साथियों जब बात दिल की हो तो आपको कौन सा गाना याद आता है? वैसे जरा ये तो बताइए कि विविध भारती आपके दिल के कितना करीब है।

तो भाई आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के गाने से। हमारी एक लिसनर ने लिखा है कि आपने बहुत ही खूबसूरत और रूहानी अंदाज में मौसम के बदलते मिजाज और जज्बातों को बयां किया है। गर्मी की तपिश से लेकर सावन की फुहार तक का सफर वाकई किसी प्रेम कहानी से कम नहीं। यूं तो मौसम का हर रंग एक अलग अलग कहानी है और बारिश की हर बूंद किसी की याद का छोटा सा दर्पण, लेकिन तपती गर्मी में छांव जैसी मुलाकातें ही तो जीवन को सचमुच हसीन बनाती हैं। और आज के इन्होंने शब्द दिए हैं, ठंडी हवा, छुपा, रिमझिम, सावन, इंतजार, कतरा कतरा, पानी, अधूरी कहानी, मौसम, रंग, मुलाकात, पल, धूप, छांव और मुस्कुराहट। क्या बात है भाई, आपने खुद ही इतना प्यारा टेक्स्ट लिखकर भेज दिया।

हमारे एक साथी लिखते हैं तो कि आज तो आपकी आवाज में सिर्फ कार्यक्रम को सुना जाएगा, इस तपती धूप में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आप कार्यक्रम सुनिए, एंजॉय कीजिए। वैसे साथियों, कुछ साथी हमारे इस नए कार्यक्रम का शय स्वरूप अभी नहीं समझ पाए हैं, और वैसे भी परिवर्तन तो संसार का नियम है। कुछ तो परिवर्तन हर जगह जरूरी होता है, हम अपनी जिंदगी में भी तो परिवर्तन करते हैं ना। तो बस ये परिवर्तन शुरुआत में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन बाद में यही चेंजेस बहुत इजी और बहुत आसान और मनोरंजक हो जाते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि हैव अ नाइस सैट संडे, और गर्मी चली गई है और यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है, शायद इन्होंने कहीं उत्तराखंड साइड की बातें लिखी हैं। और एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत पढ़ने पर 1978 में चौथी कक्षा में पढ़ी हुई एक कविता याद आ गई है, मैं लिख रहा हूँ। सूरज तपता धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता, आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगारे बादल, रिमझिम बूंदे बरसा बादल, झमझम पानी बरसा बादल, लो घनघोर घटाएं छाई, टप टप टप टप बूंदे आई, बिजली चमक रही चमचम, बिजली चमक रही चमचम, लगा बरसने पानी झमझम। वाह, क्या खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही एक लिखते हैं कि सुहाने सफ़र को आज मौसम के रंगों में रंगकर आपके साथ हो चलेंगे, और कहेंगे कि धूप में निकला न करो रूप की रानी। और अभी तपती गर्मी, हम राजस्थान से दो बूंद पानी को सहेजते हुए इसी फिल्म का गीत, दो बूंद पानी नहीं तो यहाँ जिंदगानी नहीं, कुछ बूंदें बारिश की कितनी सुखद एहसास दिलाती हैं, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, और ये सब गीत इन्हें याद आ रहे हैं, और भी इन्होंने गाने लिख भेजे हैं। तो एक साथी ने कुछ गाने लिखे हैं कि आज के शब्द हैं गर्मी, ठंडी, हवा, धूप, छांव, रिमझिम बारिश, कतरा कतरा पानी, मौसम वगैरह वगैरह। ठंडी हवाएं लहरा के आएं, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, और आज मौसम बड़ा बेईमान है। यकीन मानिए साथियों, गर्मी बहुत प्रचंड रूप धारण कर चुकी है, और इतनी तपिश में सभी को शीतलता की ज़रूरत है, यानी ठंडी हवाओं की। और ये हवाएं हैं ना, जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जरा सोचिए ना, ये हवाएं ना होती तो क्या होता। और हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि विविध भारती आपके दिल के कितना करीब है, फटाफट उसका जवाब दीजिए। और वैसे अब जो गाना आप सुनेंगे, आप में से कुछ साथियों ने वही गाना चुना जो मैंने भी चुना, तो आइए हम ये गाना सुने, साथ साथ आप हमें सवाल का जवाब दीजिए।

ठंडी ठंडी हवा का आनंद देता ये गाना प्रिंस फिल्म से हमने लिया था लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में। और हमारे बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। बेहद खूबसूरत गाने से प्रोग्राम का शानदार आगाज हुआ। तो एक सखी ने लिखा है कि दिल तो है दिल मैं लिख रही थी फिर रह गई क्योंकि सब्जी वाला आ गया और भूल ही गई। क्या बात है, लेकिन हमारी और आपकी पसंद मिल तो गई।

हमारे एक साथी लिखते हैं कि जैसे दिल का कोई एतबार नहीं, वैसे सुरीले सफर में कौन सा गीत आप पेश कर दें कोई नहीं कह सकता। पहला गीत ही हमारी सोच में नहीं था, तो भाई हमारी और आपकी सोच यहाँ पर थोड़ा सा डगमगा गई। और हमने आपसे पूछा था कि विविध भारती आपके दिल के कितने करीब है, तो हमारे ढेर सारे साथियों ने जवाब दिया। एक साथी लिखते हैं, जितना लबों के करीब हंसी है, जितना फूलों के करीब महक है, बस उतना ही दिल के करीब विविध भारती है। एक साथी ने कमेंट में लिखा है कि आज के सुरीले सफर में आप आई हैं, तो भाई आज तो इस सफर का और भी मजा आएगा क्योंकि इस कार्यक्रम में आप आए, सफर का अंदाज सुरीले गानों से होगा, आप गाने बहुत सुरीले और मधुर बजाने वाली हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आज के इबारत के सुलझे अनसुलझे रहस्यों के बीच गानों का मजा है, विविध भारती से दिन शुरू होता है, सुबह की शुरुआत भी विविध भारती के गाने न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुनता हूं, विविध भारती को कई पीढ़ी से सुना जा रहा है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मेरे दिल के इतने करीब है कि सुबह 9 बजे जब दुकान का शटर खोलता हूं और बिजली चालू करता हूं, तो पहला स्विच होम थिएटर का होता है जिसके अंदर विविध भारती रेडियो स्टेशन है जो रात को 9 बजे तक चलता है। जब दुकान का शटर बंद होता है तो आखिरी स्विच रेडियो का बंद होता है। वाह क्या बात है। वैसे साथियों आप तो जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में जो सुरीला सफ़र एक कार्यक्रम है, इसमें सवाल ज़रूरी नहीं कि हम गीतों से या टेक्स्ट से रिलेटेड लें, सवाल कोई भी कहीं से भी पूछ सकते हैं। एक साथी लिखते हैं कि सबको नमस्कार करते हुए कि हमारे भोपाल मध्य प्रदेश में हवा पानी का दौर चल रहा है, मौसम बहुत सुंदर है, गर्मी से बहुत राहत है, तो भाई गर्मी से राहत है तो ठंडी हवाओं का आनंद लेते रहें आप। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो आज बहुत ठंडी और तेज़ हवाएं चल रही हैं, बादल छाए हुए हैं, तो छाए हुए बादलों का भी आनंद लीजिए। और एक साथी लिखते हैं, भाई हवाएं ना होती तो जीना ही मुश्किल हो गया होता। तो दूसरे साथी लिख बैठे हैं कि दिल के करीब नहीं, दिल में है जी विविध भारती। और एक साथी ने लिखा है, आपके साथ सुरीला सफ़र की शुरुआत होने वाली है और हम सभी इसके लिए बहुत उत्साहित हैं और इस कार्यक्रम को और भी रोचक बनाने के लिए धन्यवाद। एक साथी ने लिखा है, पानी शब्द पर गाना होगा, पानी रे पानी रंग तेरा कैसा, शोर फिल्म का गाना। दूसरे साथी लिखते हैं कि तपती गर्मी में सावन का इंतजार, कतरा कतरा पानी की बूंदें अधूरी कहानी पूरी करती हैं, इस मौसम पर तो ये गाना एकदम फिट बैठता है, रिमझिम गिरे सावन। साथियों रिमझिम बारिश की बूंदें, सोंधी मिट्टी की खुशबू, पहली बारिश का एहसास, सब कुछ बड़ा ही प्यारा लगता है ना। बात रिमझिम शब्द की हो तो एक गाना जो आप सभी पसंद कर रहे हैं वो जहन में आता ही आता है। ये वो गीत है साथियों जिसका फिल्मांकन, जिसके बोल, गीत, संगीत, आवाज़ हर बारिश को और भी खूबसूरत बना देती है। तो ये गाना सुनिए और बताइए ज़रा इस गाने के संगीतकार का नाम।

भाई मंजिल फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज में हर बारिश को और भी खूबसूरत बना देता है। आपका क्या कहना है बताइएगा। वैसे हमारे एक साथी ने लिख भी भेजा है कि चलो मेरी बनी हुई इबादत का एक गीत तो शामिल हुआ फिल्म मंजिल का, रिमझिम गिरे सावन लता दीदी की आवाज में। यहाँ हमारी और आपकी पसंद मेल खा गई। और इस गाने के लिए आप सभी ने लिखा है कि मंजिल फिल्म का गाना अमित अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी मरीन ड्राइव पर बारिश का आनंद लेते हुए। और एक साथी लिखते हैं रिमझिम गिरे सावन योगेश जी का लिखा हुआ ये गाना, सावन और बारिश की बात हो और ये गाना न बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी साथी इस गाने को लिख रहे हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग और एक बड़ी ही प्यारी सी इमोजी बना के भेज रहे हैं। एक साथी लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर कुछ इन शब्दों से होकर गुजरेगा, ठंडी हवा रिमझिम सावन इंतजार पानी और मुलाकात। एक साथी ने लिखा है कि सुरीले सफर में शामिल हो रहे सबको नमस्कार भेजा है। लिखते हैं कि शुरू में ही आपको ईमानदारी से मैं कह दूं कि मेरे इम्तिहान के दिन कब के लग चुके हैं, लेकिन जब आपके सफर इस सफर में शामिल होने जा रहा हूं तो लग रहा है कि फिर से इम्तिहान के दिन लौट चुके हैं। खैर ये तो ज़रूर कहूँगा कि आपकी आज की इबारत इतनी खूबसूरत है कि उसकी इबादत करने की दिल में चाह है, और क्यों ना हो, उसमें एक तरफ तपती गर्मी है तो दूसरी तरफ ठंडी हवा है, कहीं रिमझिम सावन है तो इसी मौसम में किसी का इंतज़ार है। भाई बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। आगे लिखते हैं ये, इंतजार खत्म होने के बाद मुलाकात होने जा रही है, मुलाकात के इस पल में मुस्कुराहट लेकर हम उससे मिलते हैं तो दिल में भी ये डर रहे कि कहीं कहानी अधूरी न रह जाए। तो कहते हैं आगे कि देखा बातों बातों में मैंने कितना कुछ कह डाला कि सांस फूल रही है। गानों के बारे में आपको बाद में बताऊंगा ब्रेक के बाद, तो चलिए फिर भी सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। चलिए एक बार मैं टेक्स्ट और पढ़ देती हूँ। तपती गर्मी के बीच दिल ठंडी हवा की हल्की सी छुअन के लिए तरसने लगता है और उसी में छुपा होता है रिमझिम सावन का इंतज़ार, जहाँ कतरा कतरा पानी की बूंदें किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आती हैं। इन्हीं बदलते मौसमों के रंगों में मुलाकात के पल और भी खास हो जाते हैं। कभी तपती धूप में छांव का एहसास तो कभी सावन की बारिश में भीगी हुई सी मुस्कुराहट, जैसे मौसम भी किसी अपने के मिलने की कहानी कह रहा हो।

हमारे एक साथी लिखते हैं, शुभ दोपहरिया, वेरी गुड आफ्टरनून। सुरीला सफर प्रोग्राम में आज दोपहर 1 बजे तपती गर्मी में संडे की छुट्टी के दिन आपके साथ ठंडी हवा की हल्की सी छुअन का बेसब्री से हम सभी श्रोताओं को इंतजार है। तो आपका इंतजार पूरा हो गया, कार्यक्रम चालू है विविध भारती पर। एक साथी ने कुछ गाने लिख भेजे हैं जो रिलेटेड हैं आज के टेक्स्ट से। ठंडी हवाएं लहरा के आएं, रिमझिम गिरे सावन, ये मुलाकात एक बहाना है, अल्लाह मेघ दे पानी दे, इंतजार और अभी गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कड़ी कड़ी, कतरा कतरा पानी है, वगैरह वगैरह शब्द और ये मेरे गीत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी लिखते हैं कि लगभग भारत के बड़े हिस्से में मानसून जैसे मौसम लग रहा है, कहीं तेज़ हवाओं के साथ बारिश और काली घटाएं छा रही हैं, मौसम बिल्कुल सुहावना हो रहा है, हल्की फुल्की बारिश हो पर बहुत राहत है। ऐसे मौसम में आपसे एक बारिश वाला गीत सुनना चाहूँगा। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है, गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, ऐसे में हम सबको खूब पानी और तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। सावन तो अभी दूर है लेकिन हमें इंतजार है कि रिमझिम बारिश ही हो जाए और इस धूप और गर्मी में थोड़ी निजात मिल जाए। आज का सुरीला सफर और भी सुरीला होने वाला है भाई, सावन दूर है तो क्या हुआ, गीतों के जरिए तो हम सावन के करीब जा सकते हैं ना।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, फिल्म थी जैसे को तैसा। हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म मंजिल का गीत जिसे आरडी बर्मन जी ने संगीतबद्ध किया, चलो पहले तीन गीतों में ये गीत तो हमारी पसंद का आ ही गया, आगे देखते हैं कौन सा गीत हमारा चुना हुआ बचता है। और एक साथी ने लिखा है कि रिमझिम गिरे सावन इस गीत की खासियत है कि ये मेल और फीमेल दोनों ही वर्जन में कर्णप्रिय है, आज के दौर में ऐसा कम ही देखने को मिलता है।

यकीनन साथियों, गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, लेकिन फिर भी ऐसे गीत गर्मी से थोड़ी सी राहत तो दे ही देते हैं। एक साथी ने कुछ पंक्तियाँ लिख भेजी हैं कि गर्मी आई, धूप सुनहरी, आंगन में फैली लू की लहरी, पेड़ खड़े हैं चुपचाप जैसे ढूंढ रहे हों ठंडी पहरी, पसीने की बूंदें मोती बनकर चेहरे पर चमक दिखाती हैं, पर आम की मीठी खुशबू से मन में ठंडक आ जाती है, गर्मी की ये तपती बेला सिखा जाए धैर्य का खेला। बिल्कुल सच्ची बातें लिख भेजी आपने। गर्मियों से राहत के लिए हम सभी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं कि गर्मी से कुछ राहत मिल जाए, लेकिन थोड़े से गीत संगीत भी तो ऐसे होते हैं जो हमें गर्मी से राहत दिलाते हैं, थोड़े से सावन का एक एहसास दिलाते हैं कि हाँ, अब बस सावन करीब है, बारिश करीब है ना। एक साथी लिखते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, मुझे लगता है कि आज के शब्द सावन, तपती गर्मी और मुलाकात हो सकते हैं और इन शब्दों पर कुछ रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे। तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि विविध भारती सुनने से बहुत फ़ायदा है, प्रोग्राम का आनंद लेते हुए काम करना, काम में कोई बाधा नहीं होती। और मंजिल फिल्म के गाने के लिए एक साथी लिखते हैं कि नारीमन पॉइंट के किनारे बरसात में मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन भीगते जा रहे हैं और गाना बज रहा है, बरसात पर ऐसा कोई गीत इतना रोमांटिक अभी तक नहीं बना। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि बीते एक सप्ताह से हमारे बिहार के साथ साथ उत्तर भारत का मौसम गीला और शीतल हो गया है, मध्य अप्रैल में जून की गर्मी का प्रवेश हो गया, अभी शीतल पूर्वी के झोंके सुरूर के लग रहे हैं। ये सच में साथियों बहुत ज़रूरी है, ऐसे में पानी का बचाव भी करना और जहाँ तक हो सके हम अपने को हाइड्रेट रखें, भरपूर पानी पी के। और वैसे भी साथियों, पानी के साथ साथ अन्न हो या कोई भी चीज़ हो, उसका एक एक कतरा हमारे लिए कीमती होता है। कहते हैं ना कि पानी की एक बूंद किसी की ज़िंदगी बचा सकती है, और वो अमृत के

कतरा कतरा मिलती है, आशा भोसले की आवाज में इजाजत फिल्म का ये गाना था। एक साथ ही लिखते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ग्रीष्म की तपन के पश्चात आकाश में बादल छाने लगते हैं, श्वेत शाम बादलों के समूह, और ये संदेश देते हैं जन जन में प्राणों का संचार करने वाली वर्षा ऋतु के आगमन का। आकाश में छाई श्यामल घटाओं के साथ ठंडी ठंडी बयार के साथ झूमती आती है, जन जन को राहत पहुँचाती है जीवन देने वाली वर्षा की पहली फुहार। और वैसे कई जगह पर अब थोड़े थोड़े बादल छाने लगे हैं, आज मुंबई का मौसम भी थोड़ा सा बदला है। एक साथी लिखते हैं, हमारे प्रांत का मौसम बेहद खुशनुमा है, आज तो सुबह से बादल है और लगता है कि कब रिमझिम जेठ की दोपहरिया बरस जाए। और एक साथी ने लिखा है कि दो अमलतास के पेड़ हमारे घर के फ्रंट पोर्शन के गार्डन में हैं। अमलतास के इन पेड़ों से चाहे बाहर तपती धूप की गर्मी हो या रिमझिम बारिश, और हम उन पेड़ों के नीचे खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, या सड़क की तरफ कोई राहगीर इन पेड़ों की छांव में रुक जाए, ठंडी हवा की हल्की छुअन का एहसास कराते हैं ये। बात तो बिल्कुल सही है साथियों की, हम चाहे एसी लगवा लें या कूलर लगवा लें, लेकिन जो आनंद, जो सुकून, जो राहत पेड़ की छांव तले मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती। कहते हैं ना कि माँ के हाथ की रोटी का स्वाद और कहीं नहीं मिलता, तो बस वही हाल है पेड़ की छांव का। तो लीजिए भाई, दूसरे साथी लिखते हैं कि मेरी प्लेलिस्ट में से तीसरा गाना बज रहा है, क्या बात है। और सभी ने लिखा है कि कतरा कतरा गाने में नसीरुद्दीन शाह जी थे रेखा जी के साथ। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई क्या बात है, हमारी इबारत का लिखा हुआ दूसरा गीत भी शामिल, इजाज़त फिल्म का रेखा जी के साथ, कर्मा फिल्म के खेरू भाई यानी कि नसीरुद्दीन शाह जी, बहुत ही शानदार नशीली दिलकश अमर आवाज़, आदरणीय आशा ताई की। तो एक साथी ने लिखा है, आज का सुरीला सफ़र का प्रोग्राम बहुत लाजवाब। और एक साथी लिखते हैं, बहुत प्यारे गाने सुनने को मिल रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि गर्मी पड़ रही है, अभी आसपास मौसम खुशनुमा हो गया है गाने सुन सुनकर। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आपका गुड आफ्टरनून भाई बहुत अच्छा लगता है, तो भाई आप सभी को एक बार फिर से वेरी गुड आफ्टरनून। एक कमेंट आया है, हमारे साथी लिख रहे हैं कि मेरी हमने शब्द तो सही पकड़ लिए हैं लेकिन अभी तक एक भी गीत नहीं मेरी पसंद का आया या मेरे सोचा हुआ आया। तो दूसरे साथी लिखते हैं, आपकी इबारत को लेकर मेरे मन में हज़ारों गीत उमड़ रहे हैं, मैं किस किस गीत का जिक्र करूं, हैरान हूं, परेशान हूं, लेकिन दो गाने तो शायद आपको सुनाने ही पड़ेंगे। और इन्होंने लिखा है, और इन्होंने लिखा है कि हो सके तो मेरी पसंद ज़रूर शामिल हो। आगे लिखते हैं हमारे दूसरे साथी कि यहां धर्मशाला में सुबह से बारिश हो रही है, ऊपर पहाड़ों में बर्फ पड़ गई है, पंखों की जरूरत नहीं, सुरीला सफर का आनंद ले रहे हैं। यकीनन साथियों, बात मौसम की हो तो हर मौसम अपने में निराला है, खास है, वैसे बारिश के रंग तो अलग ही होते हैं, लेकिन प्यार का मौसम हमें हमेशा ही जमा रखता है। कभी इंतजार, कभी मिलन, कभी जुदाई, तो कभी बेईमान सा हो जाता है मौसम। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस गाने का जिक्र कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं उस गीत की ओर।

0: constituency will oversee the proceedings and ensure strict adherence to extant instructions of the commission.
1: All the counting centres are fitted with CCTV cameras for monitoring. The EVMs and VVPAT have been moved from the strong rooms to the counting centres with full security. Flag marches were held in the main places all over the state. Traffic will be diverted near the counting centres to prevent any untoward incidents. DMK and TVK has written to the Election Commission alleging disruption and asked the Election Commission to take steps for ensuring law and order in the state tomorrow. With Sushil Tiwari, Joy, reporting from Chennai for Akashwani.
0: In Puducherry, all arrangements have been made for counting of assembly elections with elaborate security and monitoring mechanisms in place. Talking to Akashvani Puducherry Chief Electoral Officer P. Jawahar, the entire process will be conducted in a transparent manner under the supervision of observers appointed by the Election Commission of India.
2: The counting day arrangements for the Union Territory of Puducherry has been made already, and I, as a Chief Electoral Officer, along with my Deputy COs, have already inspected few counting centres personally to ensure that all the arrangements are put in. In case of Puducherry region, we are having 23 assembly constituencies for which counting is going to take place in three centres. The first centre is Women's Engineering College, where five returning officers would be doing the counting. Second counting centre is Motilal Nehru Government Polytechnic, where four attending officers will be doing the counting. The third and center in Puducherry is Thagarats College, which is having three attending officers.
0: In Keralam, all arrangements have been completed for the counting of votes for assembly elections. We have more details from a correspondent.
3: Senior officials have reviewed the final round of preparations at all the 140 counting centres in Keralam. Tight security arrangements have been put in place in and around the counting centres to ensure smooth and orderly process. Officials are scheduled to reach the counting centres at 6 a.m. tomorrow. The Election Commission has made it mandatory for all personnel, including returning officers, to carry the newly introduced QR-coded photo identity cards and introduced a three-layer security system for the entry into counting centers. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
4: Janadesh 2026.
0: Trends and results of the assembly elections in Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry.
4: Comprehensive coverage with regular updates from correspondents on the ground and experts' analysis.
0: Special program from 8:30 a.m. onwards tomorrow.
4: Tune into Akashvani Gold and additional frequencies.
0: The Election Commission has taken the extraordinary step of cancelling the entire voting process in the Faulta Assembly constituency of South 24 Porganas District, West Bengal. Fresh polling will be held on the 21st of this month across all 285 polling stations, including auxiliary booths. Counting of votes will be held on the 24th of May. We have more from a correspondent.
5: In its statement, the Commission explained that the decision followed reports of severe electoral offences and large-scale subversion of the democratic process during voting on 29th April. Observer reports highlighted serious irregularities, including tampering with electronic voting machines, intimidation of voters, and violations of polling rules. In several booths, ballot unit buttons were deliberately covered with black tape, preventing proper voting. Unauthorised individuals were also found entering polling stations and casting votes on behalf of others. Missing or inconsistent video footage further raised concerns about transparency. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
0: Union Parliamentary Affairs Minister and Senior BJP leader Kiran Rijiju alleged that all the opposition parties have continuously attacked the government agencies, Election Commission, electronic voting machines, media, and now targeting the judiciary. In a social media post, Mr. Rijiju said, these parties don't realize that they are attacking the core of the country's democracy. He further added that people of the country will give them a befitting reply and teach a lifetime lesson. Mr. Rijiju said that during the rule of the Congress Party, emergency was imposed in 1975. He claimed that during Congress's government, top constitutional authorities and heads of agencies were directly appointed by the government, unlike the present system where appointments are made through a committee. A massive fire today claimed 9 lives in Vivek Bihar area of the national capital. The Delhi Fire Services said they received information about the fire incident early this morning, following which 14 fire tenders were rushed to the spot to douse the flames. The department informed that the fire was brought under control by 6:25 a.m. Talking to media, Fire Officer Mukesh Verma informed that the fire broke out on some floors of a 4-storey building.
6: Immediately, हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची.
7: Fire tenders reached the spot. Along with extinguishing the fire, we conducted a rescue operation. Teams successfully rescued 15 individuals. Nine of those rescued were transported to GTB hospital, where one person was treated for burn injuries, while the others were discharged. During a floor-by-floor search of the premises, officials recovered nine charred bodies, which have since been handed over to the Delhi police.
0: Lieutenant Governor of Delhi Taranjit Singh Sandhu and Chief Minister Rekha Gupta have expressed grief over the loss of lives in the tragic fire accident. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Amid the ongoing West Asia conflict, OPEC plus countries have agreed in principle to raise oil output targets in June. Reports say that seven OPEC plus countries have agreed to raise oil output targets by about 188,000 barrels per day next month. This will be the third consecutive monthly increase amid the geopolitical crisis and the departure of the United Arab Emirates UAE from the group. With the UAE leaving, OPEC Plus includes 21 members, including Iran. Last week, the UAE announced it was leaving the OPEC and OPEC Plus cartels. Iran has submitted a 14-point plan to the United States outlining a framework aimed at ending the war on all fronts, including Lebanon. According to the Iranian proposal, the issues should be resolved within 30 days and insists that diplomatic efforts must prioritize the termination of the war as opposed to simply extending a ceasefire. The Iranian document follows a 9-point U.S. proposal and covers various topics including guarantees against military aggression and the withdrawal of U.S. military forces from the region surrounding Iran. On the other hand, U.S. President Donald Trump yesterday stated that he would soon review the plan. However, he expressed his dissatisfaction with the offer. The president warned that military options continue to remain on the table. Indian students in the UAE are appearing for National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 today, with examination centres open in both Dubai and Sharjah. The pen and paper test conducted by the National Testing Agency has been held from 12:30 p.m. to 3:30 p.m. UAE time. The Indian High School in Dubai and Sharjah Indian School in Sharjah are serving as a designated examination centres. The examination has been overseen by the Consulate General of India in Dubai. The Indian Army contingent has departed to Cambodia for the second edition of India-Cambodia bilateral military exercise Sinbaks 2. In a social media post, Additional Directorate General of Public Information of Indian Army said that the exercise is scheduled to be conducted at Techno Sen Phnom Tom Meraes Pirov Royal Cambodian Air Force Training Center, Camp Basil, from 4th to the 17th of this month. It added that the exercise will be conducted with focus on company-level joint training for conduct of operations in sub-conventional environment. Today is World Press Freedom Day. It serves as an occasion to encourage and develop initiatives in favor of the press freedom and to assess the state of press freedom worldwide. The theme for this year is Shaping a Future of Peace. We have a report.
8: The World Press Freedom Day was proclaimed by the United Nations General Assembly in 1993 following a recommendation adopted at the 26th session of UNESCO's General Conference in 1991. The occasion celebrates the fundamental principles of press freedom and is an opportunity to evaluate press freedom worldwide, to defend the media from attacks on their independence, and to pay tribute to journalists who lose their lives in the exercise of their profession. The day holds significance for press freedom and its independence. With Saklain, this is Sanyukta Yadav, Akashwani News, Delhi.
0: Weather in Uttarakhand has taken a turn once again. Several parts of the state are witnessing intermittent rainfall, leading to a drop in temperature. The Met Department has forecast similar conditions to persist in the coming days. We have more details from a correspondent.
9: Light to moderate rainfall is being experienced in different parts of the state since this morning. Due to intermittent rain over the past 3 days, mercury in many areas has fallen below normal. According to the Met Department, Dehradun rainfall is likely to continue most parts of the state today and tomorrow. The department has also issued a warning of thunderstorms accompanied by strong winds during this period. An orange alert has been issued for hailstorm and heavy rainfall in Dehradun, Tehri, Haridwar, Pauri, Nainital, Champawat and Udham Singh Nagar district, while a yellow alert has been issued for other areas. According to the Met Department, this spell of rain may continue in the coming days, which would lead to a further drop in temperature. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
0: India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall today at isolated places over northeast India, Kerala, Mahe, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu and Puducherry. Places over Jammu and Kashmir, Ladakh, Chhattisgarh and coastal Andhra Pradesh are expected to experience thunderstorms and lightning today. Similar weather conditions also likely to prevail today over parts of Haryana, Chandigarh, Delhi, Bihar, Odisha, Kerala, Punjab and Madhya Pradesh. The weather agency further predicted heat wave conditions today in places over coastal Andhra Pradesh. According to IMD, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are expected to witness hot and humid weather conditions till tomorrow. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Kolkata Knight Riders at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 3:30 today. Sunrisers Hyderabad are currently in third place, while Kolkata Knight Riders are positioned in eighth place. In another match, host Gujarat Titans will face Punjab Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. The match will start at 7:30 p.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Stage is set for counting of votes for four states' assemblies and one union territory tomorrow. All arrangement in place. Election Commission orders re-polling in all 285 polling stations of Falta Assembly constituency in West Bengal. Polling to take place on the 21st of this month. A massive fire claims 9 lives in Vivek Vihar area of Delhi. OPEC plus countries agree in principle to raise oil output targets next month amid ongoing West Asia conflict. World Press Freedom Day been observed today. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Kolkata Knight Riders today. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the Midday News.
10: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा मुख्य समाचार चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सभी इंतजाम पूरे निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से अब समाचार विस्तार से पश्चिम बंगाल असम तमिलनाडु केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी
11: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के तीन स्तरीय इंतजाम किए गए हैं जिसमें जिला पुलिस राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं यह पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी यह पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी इसमें सुपरवाइजर मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण
10: केरलम विधानसभा की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को लगभग 79% मतदान हुआ था
12: वरिष्ठ अधिकारियों ने केरलम के सभी 140 मतगणना केंद्रों पर तैयारियों के अंतिम दौर की समीक्षा की है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे ये प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। अधिकारियों को कल सुबह 6 बजे तक मतगणना केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मतगणना एजेंटों को भी मतगणना शुरू होने से एक घंटा पहले रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों सभी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए QR कोड वाले पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है। स्मिथ एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
10: पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कार्यकाल यानम और माहे में होगी।
12: पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना लासपेट इलाके में स्थित 3 केंद्रों पर होगी। ये मतगणना केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन जिलों में निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में पुलिस विभाग और अर्धसैनिक बलों द्वारा 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
2: सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स।
10: हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
13: सभी पार्टियों ने मतगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। DMK और TVK ने मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राज्य के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। सभी मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। EVM और VVPAT मशीनों को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम से गणना केंद्रों में भेज दिया गया है। राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों के पास यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
10: असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। राज्य में 9 अप्रैल को लगभग 86% मतदान हुआ था।
14: जनादेश 2026।
15: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
14: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
15: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
14: जनादेश 2026।
10: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
6: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
10: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों निर्वाचन आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में कदाचार, शासन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और

0: और प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में नशे की हालत में भाग लिया, जो चिंता का विषय है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल मोहाली में लोक मिलनी के दौरान कहा कि विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल जनता के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस से अलग होने के बाद ये लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन करेगा। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी।
1: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों।
0: श्री सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में 38,00,000 घरों को शामिल किया जा चुका है। और बात मौसम की। उत्तराखंड में कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा जारी रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार आज और कल भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान गर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: आज पूर्वोत्तर भारत, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया था। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। संयुक्त अरब अमीरात में भी भारतीय मूल के विद्यार्थी नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में

0: शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। ईरान ने संघर्ष विराम के लिए अमेरिका को 14 सूत्री प्रस्ताव सौंपा है। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा पेश की गई है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि कूटनीतिक प्रयासों में युद्ध विराम को केवल बढ़ाने के बजाय युद्ध की समाप्ति को प्राथमिकता दी जाए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वे इसकी समीक्षा करेंगे। भारत और कंबोडिया के बीच दूसरे सैन्य अभ्यास सिनबैक्स के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कंबोडिया रवाना हो गई है। सेना के अपर लोक सूचना महानिदेशक ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह अभ्यास 4 से 17 मई तक होगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच अर्ध शहरी परिवेश में किसी भी अभियान के लिए तालमेल को और बेहतर बनाना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ଏଥରଜେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲିଖରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ।

0: दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।
1: तेरे घर के सामने फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वर, हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत। और अब अगले गाने में कौन सी बात होगी? कुछ तो जादू था उसकी नज़र में, कुछ तो जादू था उसकी नज़र में, पहली ही नज़र में हम दिल हार बैठे।

अनपढ़ फिल्म का ये यादगार गीत जो आज भी सुनते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे मदन मोहन की तर्ज। और अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम के समापन हम एक ऐसे गाने से करेंगे जो थोड़ा सा चंचल है। मुकेश का स्वर, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुने क्या कहता है ये गीत।

0: हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए सुने कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहर या शुभ नमन। कार्यक्रम शुरू हो मन चाहे गीत, उससे पहले ये छोटा सा संदेश आपके लिए।
3: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
3: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
3: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091,

साथियों, हाजिर हूँ मैं शेफाली कपूर आपके मनपसंद कार्यक्रम मन चाहे गीत के साथ। साथियों, एक लंबे समय के बाद ये कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ है। आप सभी के पत्रों का बेसब्री से इंतजार है हमें। वैसे आज है संडे, रविवार यानी छुट्टी का दिन। आप में से कुछ साथी इस समय चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे, तो कुछ मंडली में बैठकर बातचीत, तो कुछ साथी पेड़ के नीचे चारपाई डालकर मोबाइल या फिर ट्रांजिस्टर सिरहाने रख के बस इंतजार कर रहे होंगे मन चाहे गीत कार्यक्रम का, क्यों है ना? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम मन चाहे गीत, और ये है आज का आपका अपना पहला मनचाहा गाना।

यकीन मानिए, मनचाहे गीत कार्यक्रम में भी आपके पत्रों से बहार आ जाती है। बहरहाल आपको बता दें कि आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में जो पहली फरमाइश पूरी हुई, हमारे इन साथियों ने फरमाइश भेजी थी और फिल्म के नाम जो है वो था जीने की राह। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और पसंद हमारे इन साथियों की। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज शिवानी श्रीमाली। तो आपकी फरमाइश पूरी हुई साथियों। आज है दोबारा शुरू हुए कार्यक्रम मनचाहे गीत का दूसरा दिन, तो फटाफट पोस्टकार्ड पर अपनी पसंद का गीत अपने नाम और पते के साथ भेज दीजिए और इंतज़ार कीजिए अपने पसंदीदा गीतों के शामिल होने का। बहरहाल अब हम बढ़ेंगे आज के कार्यक्रम में आपकी दूसरी पसंद की ओर, जो है गुनाहों का देवता फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत और पसंद किसकी, हितू रांची से हमारे

0: लता मंगेशकर की आवाज में गुनाहों का देवता फिल्म का ये गाना सुना। अगली फरमाइश किसकी होगी, किस गाने के लिए होगी, सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आई फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
3: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
1: 1981 बसेरा।
4: जहां पे सवेरा हो बसेरा वही है।
1: 1984 दुनिया।
3: तू चांद नगर की शहजादी मैं जिस धरती का बंजारा।
1: 1993 फिल्म साहिबा।
3: कैसे जियूंगा
1: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
4: नजरों से कह दो प्यार।
1: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। साथियों, अभी तक आप सभी के कुछ ही फरमाइशी पत्र हम तक पहुंचे हैं, तो भई जल्दी जल्दी पत्र लिखिए, हमें भी इंतजार है आपके फरमाइशी खतों का। और हाँ, एक बात और, अपना नाम और पता साफ अक्षरों में लिखें ताकि हम आपका नाम और पसंद आपकी साफ साफ पढ़ सकें। तो चलिए अब बढ़ा जाए आज के इस कार्यक्रम के अगले गाने की ओर। और हमारे किन साथियों की पसंद है सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले ये गाना।

0: हम वफा करके भी तन्हा रह गए। निकाह फिल्म से आप सुन रहे थे सलमा आगा की आवाज। हसन कमाल ने इसे लिखा था और रवि की तर्ज थी। और पसंद किसकी थी ये भी बता दी जाए। इसे पसंद किया था जिला वाशिम वनोजा तांडा मैथुन से सानिका राठौर, एस आर टेलर, जय राठौर, सुनील राठौर, इंदुबाई राठौर और कुमार आशीष। और इसी गाने को पसंद किया था ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और अतीक अंसारी। चलिए एक संदेश और सुन लेते हैं, उसके बाद आज के कार्यक्रम का अगला गाना।
1: तुम्हें याद करते करते
2: छाया गीत
1: लग जा गले।
2: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: मेरे सपने अब
2: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
3: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
2: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

तो चलिए इस संदेश के बाद बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की ओर। तो बता दी जाए कि ये पेशकश कौन सी है। पापा कहते हैं, हाँ पापा कहते हैं फिल्म का नाम है। उदित नारायण की आवाज़, जावेद अख्तर के बोल, राजेश रोशन का संगीत। और पसंद किसकी? पसंद है हमारे इन श्रोताओं की, गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आप सबकी पसंद पर आपका पसंदीदा ये गाना।

0: पापा कहते हैं फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम यहीं पूरा होता है। साथियों, एक से बढ़कर एक आपकी फरमाइशें रहीं। अब आज के लिए शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: मनचाहे गीत। मन चाहे गीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में कल आपने सुना नाटक इंस्पेक्टर जनरल का पहला भाग, आज सुनते हैं दूसरा और आखिरी भाग। ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की।
1: अरे आप लोग खड़े ही रह गए, बैठिए ना। मेयर साहब
2: जी,
1: आप तो सचमुच बहुत ही सज्जन पुरुष हैं और मैं समझा था कि आप मुझे
2: डॉबचिंस्की, जहां तक मैं सोचता हूं ये अपने को छिपाए रखना चाहता है। ठीक है, हम भी ये जाहिर नहीं होने देंगे कि हम इसे पहचान गए हैं,
3: लेकिन आप इससे बातें तो कीजिए, तभी तो ये खुलेगा।
2: तुम ठीक कहते हो
4: हुजूर, मैं कुछ कहने की दृष्टि
1: नहीं। हां कहिए कहिए।
4: नहीं नहीं नहीं, मैं अपने को इसी योग्य नहीं।
1: अरे आप कहिए तो।
4: देखिए, मेरे मकान में एक बहुत ही साफ सुथरा और हवादार कमरा है, अगर आप वहां, देखिए कृपया इस बात का कोई दूसरा मतलब ना निकालिएगा, मेरे मन में तो देखिए
1: क्या बात करते हैं, मैं तो खुशी से ऐसी अच्छी जगह जाने के लिए तैयार।
4: अब आपसे क्या कहूं, मेहमान नवाजी का तो मुझे बचपन से ही शौक है।
1: मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी भेंट हो गई।
5: हुजूर ने मुझे याद किया।
1: बिल्ला
5: वो तो मैंने आपको सुबह ही दे दिया था।
1: मेरे पास इन बेकार चीजों को देखने के लिए वक्त नहीं है। ये बताओ कुल कितना बना?
4: जी आप क्यों खामखा परेशान होते, वेटर तुम जाओ, पैसे हम पहुंचा देंगे।
5: जी बहुत अच्छा। हाँ
4: हुजूर, आप शहर का मुआयना करना चाहेंगे?
1: मुआयना
4: जी?
1: आपका मतलब?
4: शायद आप ये देखना चाहें कि यहाँ के दफ्तरों और दूसरी संस्थाओं में कैसा काम वाम होता है।
1: आप क्यों खुश? डॉबचिंस्की, मैं तुम्हें दो पर्चियां लिख देता हूँ, एक अस्पताल में जमलियानिका को दे देना और दूसरे मेरी पत्नी को दे।
5: जी बहुत अच्छा।
4: आप इजाजत दें तो मैं अपनी पत्नी को दो शब्द लिख दे।
1: जरूर जरूर, पर यहाँ कागज तो होगा नहीं। खैर कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप इस बिल के पीछे लिख दीजिए।
4: जी शुक्रिया शुक्रिया। तुम फिक्र ना करना, इंस्पेक्टर साहब को बढ़िया खाना और एक बोतल शराब मिलने की देर है, सब मामला ठीक हो जाएगा। वो मैडीरा की बोतल ठीक रहेगी। डॉबचिंस्की ये लो, चलिए
1: हुजूर। तुम मेरा सामान लेकर आ जाना।
4: हाँ, तुम किसी से भी मेयर साहब का बंगला पूछ सकते हो, समझे ना। आइए हुजूर, आइए।
6: ओह, इंस्पेक्टर जनरल ऊंचे दर्जे के लेखक भी हैं। अच्छा डॉबचिंस्की, उसकी उम्र कितनी होगी?
7: उसकी आंखें काली हैं या भूरी?
6: मारिया तू चुप रह।
8: एकदम गबरू जवान, चेहरा ऐसा रौबदार कि अच्छा खासा आदमी दहशत खा जाए। अरे हाँ, मेयर साहब ने आपके लिए चिट्ठी दी थी,
6: ये लाओ मुझे तो
8: लीजिए। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी देख लूँ अस्पताल का मुआयना कैसा चल रहा है।
6: मिश्का मिश्का, अरे कहाँ मर गया? मारिया बेटी अब हम जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए, वो आने ही वाला होगा।
8: लो वो लोग आ गए।
1: जी सचमुच बहुत अच्छी संस्थाएं हैं आपके शहर में, और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात से हुई कि आप प्रत्येक यात्री से इन संस्थाओं का निरीक्षण कराते हैं। दूसरे शहरों में तो यात्रियों को अंदर घुसने तक की इजाजत नहीं है।
4: अजी दूसरे शहरों में अफसरों को सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता रहती है, और एक मैं
1: आपने तो खाना भी कमाल का खिलाया मेयर साहब। सुनिए, हमने जहाँ खाना खाया वो अस्पताल ही था ना?
2: जी जी हाँ श्रीमान,
1: लेकिन वहाँ तो बहुत सारी चारपाइयां खाली थी, मेरा मतलब है मरीज थोड़े ही दिखाई दिए।
2: जी बात यह है श्रीमान कि मैं हरचंद यही कोशिश करता हूँ कि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। विश्वास कीजिए हुजूर, हमारे अस्पताल तक आते आते मरीजों का बुखार उतरना शुरू हो जाता है और फिर हमेशा के लिए उतर जाता है।
4: हुजूर मेयर की जिम्मेदारी के आगे बाकी चीजें कुछ भी नहीं है, दिमाग हर घड़ी शहर के बारे में ही सोचता रहता है, कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। और अपने परिश्रम का पुरस्कार मैं भगवान से यही मांगता हूँ, हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हमेशा इसी तरह अपना कर्तव्य निभाता रहूं।
1: आप ठीक कहते हैं, आत्मा का सुखी सच्चा सुख है।
4: जी, जी, जी।
1: इसी आत्मिक सुख के लिए मैं कहानियां लिखता हूँ, कविता करता हूँ।
3: देखा डॉबचिंस्की,
9: इंस्पेक्टर जनरल की एक एक बात से पता चलता है कि ये कितना विद्वान आदमी है।
1: मेयर साहब
4: जी,
1: आप अपने काम से थक जाते हैं तो अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? आपको ताश वाश खेलने का शौक नहीं?
4: वाह बेटा, मेरे पेट में घुसकर सब कुछ मालूम करना चाहता है, लेकिन बच्चों मैं अभी हवा नहीं लगने दूंगा। हाँ जी नहीं, मुझे कोई शौक वौक नहीं है, मुझे तो उन लोगों पर तरस आता है जो ऐसी बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं।
1: अब साहब ये तो अपना अपना सोचना है, मैं तो अक्सर ताश की बाजी लगा लेता हूँ।
10: बड़े लोगों के बड़े शौक।
4: अरे आओ आओ आओ, इधर आओ इधर। ये मेरी पत्नी है एना, और ये मेरी बेटी मारिया।
1: तशरीफ रखिए, इधर बैठिए ना।
6: ये हमारा सौभाग्य है कि इस घर में आपने दर्शन दिए।
1: और मैं कहता हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी अच्छी जगह आकर इतने अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ।
6: आप पीटर्सबर्ग जैसी जगह से आए हैं, इस छोटे से शहर में तो आपको यूं बहुत बुरा लग रहा होगा।
1: क्या क्या कहाँ पीटर्सबर्ग की रौनक और कहाँ, लेकिन विश्वास कीजिए इस वक्त तो मैं पीटर्सबर्ग को बिल्कुल भूल गया हूँ, बिल्कुल। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। मैं बेकार के शिष्टाचार में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी को ये पता ना चले मैं कौन हूँ। लेकिन आखिर कोई कहाँ तक छिप सकता है, बताइए। कहीं भी जाता हूँ लोग फौरन पहचान लेते हैं। देखो देखो देखो, इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलेस्टकोव जा रहा है। एक बार लोगों ने मुझे कमांडर इन चीफ भी समझ लिया।
6: आप इतने आकर्षक और प्रभावशाली हैं कि
1: नहीं।
6: मैंने सुना है आप खुद भी ऊंचे दर्जे के लेखक हैं।
1: ये तो मैं नहीं कह सकता, पर लिखा मैंने बहुत है, बहुत। मुझे तो अपनी सब किताबों के नाम भी याद नहीं।
6: अगर मैं भूलती नहीं हूँ तो ला मिसराब आप ही का लिखा हुआ उपन्यास। पर मम्मी, ला मिसराब के लेखक तो विक्टर ह्यूगो हैं। मारिया तू बीच में मत बोला कर।
1: नहीं नहीं, इन्हें डांटिए नहीं। मिस मारिया आप ठीक कहती हैं, बिल्कुल ठीक कहती हैं, लेकिन इस नाम के दो उपन्यास, उनमें से एक मैंने लिखा है।
6: अच्छा।
1: मैडम आप लोग कभी पीटर्सबर्ग आइए ना, स्टेशन पर उतरते ही आपको किसी से भी पता चल जाएगा इवान अलेक्जेंड्रोविच का बंगला किधर है।
6: काश हम जा पाते।
1: मैंने तो बंगले को मेहमानों के

0: इसे बंद डिब्बों में मंगाया जाता है। हर रात डरड डरड डरड डांस होता है। दुनिया भर से मेरे नाम चिड़िया आती और सब पर लिखा होता है योर एक्सीलेंसी वगैरह वगैरह। एक बार जब मैं होम मिनिस्ट्री में था, वहाँ का डायरेक्टर जनरल कहीं चला गया
1: जी,
0: सब लोगों की नजरें उस खाली कुर्सी पर थी, लेकिन किस्मत देखे सरकार ने मुझे उस कुर्सी पर बैठा दिया। मैं तो जैसे घबरा गया, सोचा मना कर दूं, लेकिन फिर ख्याल आया, वो है ना अपने वो जार सलामत, हाँ हाँ जार सलामत नाराज हो जाएंगे। मैं जानता हूँ एक दिन जरूर वो मुझे फील्ड मार्शल बना कर रहेंगे। मुझे बहुत मानते
2: हुजूर।
0: क्या हुजूर लगा रखी है, क्या कहना है
3: जी? आप आराम करना चाहते हो तो मेरा मतलब
0: आराम
3: जी,
0: आराम खैर आराम ही करते हैं। साहिबान
4: जी,
0: खाना बहुत ही अच्छा था।
5: मैं कहती हूँ मारिया, इतना विद्वान और सब व्यक्ति किसी जनरल से कम नहीं हो सकता।
6: जरूर होगा मम्मी, और सुंदर भी कितना है। बार बार मेरी ओर देख रहा था, मुझे तो बहुत शर्म आई।
7: क्या मुसीबत है, सुबह सुबह तुम लोगों ने चेचे मचानी शुरू कर दी। कुछ ख्याल है इंस्पेक्टर जनरल बराबर के कमरे में सो रहे हैं, बराबर के कमरे में। जब से उन्होंने अपने बारे में बताया है, मेरे पाँव के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। जानती हो है ना, शराब के नशे में आदमी दिल के सारे राज खोल देता है।
5: देखो जनरल साहब का नौकर आ रहा है। आसिफ आसिफ
8: जी,
5: क्या साहब अभी सो रहे हैं?
8: जी हाँ।
7: अच्छा आसिफ साहब को क्या क्या बातें पसंद है, मेरे मतलब है वो किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं?
6: आसिफ, तुम्हारे साहब की अभी शादी तो नहीं हुई?
7: तुम लोगों की बकवास बंद होगी या नहीं, भागो यहाँ से तुम दोनों।
5: हम लोगों को बात करने का मौका ही नहीं देते।
8: मालिक ज्यादा नखरे नहीं करते।
7: अच्छा।
8: वो बस इतना ही चाहते हैं कि जहाँ जाएं उनका और मेरा अच्छी तरह स्वागत हो।
7: ये तो होना ही चाहिए, ये तो
8: मालिक मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं।
7: ये तो होना भी चाहिए। अच्छा भैया सुनो, रात तुम्हें तो नींद अच्छी तरह आ गई थी?
8: जी हाँ खुश हो।
7: अच्छा तुमने चाय वाय भी पी है? खैर एक प्याला गर्म चाय और मंगवाता हूँ। और हाँ सुनो, ये कुछ रूबल तुम अपने पास रख लो, कभी भी जरूरत पड़ सकती।
8: आपकी बहुत कृपा है। नहीं
7: तो ऐसा ना कहो भैया, तुम तो बहुत ही भले और प्यारे आदमी हो।
8: अच्छा मैं जरा देखता हूं कहीं मालिक जाग ना गए।
7: हां जरूर जरूर, मैं भी जल्दी से तैयार होकर जाता हूं।
9: कुछ फरमा रहे थे जैसा
10: जी भाई, मेरा ख्याल ये है ज्यादा अच्छा हो हम लोग लाइन बना लें। इंस्पेक्टर जनरल के सामने भेड़ बकरियों की तरह जाएंगे तो वो हमें गोली मार देंगे।
9: ठीक है ठीक।
10: स्कूल सुपरिटेंडेंट साहब
9: जी
10: आप इधर आ जाइए।
9: जी
10: हेल्थ अफसर साहब आप इनके पीछे, और पोस्टमास्टर तुम इस तरफ आ जाओ।
9: बहुत अच्छा।
11: और हम,
10: हमारा क्या होगा?
11: हमारा क्या होगा?
10: मिस्टर बॉब डॉब आप क्यों आए हैं? आप सरकारी मुलाजिम थोड़े ही हैं।
9: जज साहब मेरा एक सुझाव है
10: जी,
9: किसी बहाने से इंस्पेक्टर साहब की जेब गर्म कर दी जाए।
10: अरे भाई यही मैं सोच रहा था, लेकिन वो इतना बड़ा अफसर है, हमारा इरादा समझ गया तो हमें कच्चा ही चबा जाएगा। पर अगर हम ये पैसा भ्रष्टाचार उन्मूलन चंदा कहकर साहब की जेब में डाल दें तो कैसा रहेगा, कहिए? क्यों पोस्टमास्टर साहब?
12: एक बहाना ये भी हो सकता है कि हम कह दें साहब हमारे डाकखाने में इतने रूबल का एक गुमनाम मनी ऑर्डर आया है।
9: सुनिए ये सब तरीके गवारू हैं। सभ्य प्रगतिशील और अनुशासनबद्ध देशों की तरह अच्छा यही है कि हम लोग एक एक करके अंदर जाएं, और क्योंकि इस हालत में ये बात दो आदमियों के पीछे रहेगी। जज साहब पहले आप जाइए।
10: नहीं नहीं नहीं, पहले तुम जाओ हेल्थ अफसर साहब। सबसे पहले उसने तुम्हारे अस्पताल में अन्न जल ग्रहण किया है।
9: बाप रे, किसी बड़े अफसर को देखते ही मेरी तो टांगे कांपने लगती हैं।
10: तो आप ही जाइए ना जज साहब, आप में भाषण देने की बड़ी क्षमता है। ऐसा लगता है जैसे प्लेटो बोल रहा है।
9: बिल्कुल जज साहब, पहले आप ही जाइए।
10: अच्छा तो मैं ही चलता हूँ
9: जी।

0: कमबख्तों ने कल इतना खिलाया पिलाया कि अभी तक खुमारी चढ़ी हुई, लेकिन आसिफ प्यारे मजा आ गया। दो चार दिन भी यहाँ रह गए तो सेहत बन जाएगी।
1: देखो तो मेरी भी बड़ी खातिरदारी कर रहे हैं, समझ में नहीं आता क्यों। मेयर मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे साहब को क्या क्या बात ज्यादा पसंद है।
0: ये तुम नहीं समझोगे प्यारे।
1: अच्छा,
0: इन लोगों को मेरे बारे में कुछ गलत फहमी है।
1: अच्छा,
0: कि मैं कोई बहुत बड़ा अफसर
2: हूँ।
0: आइए तशरीफ लाइए। आसिफ तुम जाओ।
3: मैं इस डिस्ट्रिक्ट का शहर हूँ, माफ कीजिएगा हुजूर, मैं इस शहर का डिस्ट्रिक्ट जज हूँ। लेकिन
0: बैठे बैठे आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। सुनाइए आपका काम कैसा चल रहा है।
3: हुजूर, ये काम संभालने के 3 महीने बाद ही मेरा काम देखकर सरकार ने मुझे विशेष पुरस्कार प्रदान किया था।
0: और अरे मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, आपकी जेब से कुछ नीचे गिरा है।
3: नहीं नहीं नहीं हुजूर, भला मुझ जैसे छोटे आदमी की जेब से क्या गिर सकता है।
0: मैं कहता हूँ जरूर कुछ गिरा है।
3: नहीं कुछ नहीं गिरा हुजूर।
0: ये देखिए कितने सारे नोट हैं। अरे भाई आप इन्हें बेकार समझते हैं तो हमें ही दे दीजिए।
3: यहाँ दिन हुजूर, ये लीजिए हुजूर, आप ही के तो हैं।
0: तो ऐसा कीजिए कि ये नोट मुझे उधार दे दीजिए, मैं बाद में वापस।
3: बाद में? ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न कीजिए, मैं आपका अमून समय खराब नहीं करूंगा। मुझे आज्ञा है।
0: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर। अच्छा आदमी था ये भी, जज होते ही अच्छे हैं। बेचारा 400 रूबल दे गया।
4: श्रीमान मैं अंदर आने की गुस्ताखी कर सकता
0: हूँ। हाँ जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, ठीक है।
4: मैं शहर का स्कूल सुपरिंटेंडेंट हूँ।
0: कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आपको एक मजेदार किस्सा सुनाऊं।
4: जी है।
0: यहाँ आते हुए रास्ते में एक जगह
4: जी
0: मैं एक अजीब चक्कर में उलझ गया और नतीजा ये कि तब से जेब में एक पैसा भी नहीं है
4: जी। हुजूर अगर आप कुछ और ना समझे तो ये थोड़े से रूबल स्वीकार कर लीजिए।
0: ठीक है ये 400 रूबल मेरे ऊपर उधार समझे।
4: जी मेरे लिए ऐसा सुनना भी पाप है। अच्छा मुझे आगे दीजिए। नमस्ते।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। कौन कौन साहब हैं
5: जी?
0: अरे आप वहाँ खड़े खड़े क्यों कांप रहे हैं, अंदर आ जाइए।
5: जी मेरा नाम जिमलानी का है। कल आपने मेरे अस्पताल को ही अपने दर्शनों से पवित्र किया था।
0: हाँ हाँ हाँ, लेकिन मिस्टर जिमलानी का मेरा ख्याल है आज आप कल से कुछ बड़े लग रहे हैं।
5: हो सकता है हुजूर, हो सकता है, खुशी पाकर ही आदमी बड़ा होता है। विश्वास कीजिए मैं जज, स्कूल सुपरिंटेंडेंट और मेयर की तरह नहीं हूँ, जिनका ना कोई ईमान है ना चरित्र। मुझे यही आश्चर्य है कि ऐसे निकम्मों को सरकार ने भर्ती कैसे
0: किया। अच्छा? मुझे इन बातों का बिल्कुल पता नहीं था। आप देखिए ऐसा कीजिए एक बार फिर आइएगा और मुझे सारी बातें बताइएगा।
5: जरूर।
0: देखिए यहाँ आते हुए रास्ते में ना जाने कहाँ मेरा बटुआ गिर गया।
5: अच्छा।
0: अगर आप मुझे 400 रूबल उधार दें।
5: जरूर जरूर ये लीजिएगा। अच्छा मैं फिर आपके दर्शन करूंगा।
0: जी शुक्रिया शुक्रिया, जरूर कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा।
6: नमस्कार श्रीमान, मैं पीटर इवानोविच बाबसिंची हूँ, इस शहर का एक सच्चा नागरिक और जमींदार।
7: श्रीमान मैं पीटर इवानोविच डॉबचिंस्की हूँ, शहर का दूसरा सभ्य नागरिक और जमींदार।
5: जमींदार?
0: आप दोनों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। सुनिए आपके पास कुछ पैसे होंगे?
6: पैसे?
0: अगर आप मुझे 1000 रूबल उधार दे सके तो।
6: विश्वास कीजिए मैं घर से इतना पैसा लेकर चला ही नहीं।
7: क्षमा कीजिए मैं तो घर से ही नहीं आया हूं।
0: कोई बात नहीं, मैं 1000 की जगह 100 रूबल से भी काम चला सकता हूँ।
6: डॉबचिंस्की तुम्हारे पास 100 रूबल तो होंगे ही, मेरे पास तो कुल जमा 40 है।
7: मेरे पास भी 25 रूबल ही निकले हैं।
6: अरे ध्यान से देखो तुम्हारी बाई जेब उभरी हुई है, कुछ रूबल अस्तर में नाटक।
0: अरे अरे आप लोग परेशान ना होइए, लाइए 65 ही दे दीजिए। हाँ आप लोग यहाँ किसी काम जाए?
6: जी हाँ श्रीमान, पीटर्सबर्ग में जिन बड़े बड़े अधिकारियों से आपका मिलना जुलना हो उनसे बस इतना अवश्य कह दें कि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं।
7: और इस शहर के पीटर इवानोविच डॉबचिंस्की को भी अच्छी तरह से जानते हैं।
0: इसमें क्या है? मैं जरूर कह दूं, दो तीन बार कह दूंगा, बल्कि कई बार कह दूंगा।
6: धन्यवाद श्रीमान।
0: कितने गधे हैं ये लोग, मुझे पीटर्सबर्ग का इंस्पेक्टर जनरल समझ लिया। मैंने भी रात नशे में ना जाने कहां कहां की हाँकी होगी। क्यों ना ये सारी घटना अपने लेखक मित्र ट्रिपिचकिन को लिख भेजूं वो इस जोरदार मामले पर फटाफट कोई कहानी या फिर ड्रामा लिख डालेगा। अभी उसे चिट्ठी लिखता हूँ। प्रिय मित्र ट्रिपिचकिन, तेरी नई रचना के लिए एक मनोरंजक सच्ची घटना भेज रहा हूँ।
1: मालिक, मालिक, शहर के कुछ व्यापारी आपके दर्शन करने और मेयर के शिकायत करने आए।
0: उन लोगों से कह दो फिर किसी वक्त आए, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। हाँ हाँ, वो मुझे कुछ देने के लिए लाए हो तो लेना मत भूलना।
1: बहुत अच्छा मालिक।
0: अरे सुनो से
1: जी,
0: तुम एक घोड़ा गाड़ी तैयार करा दो।
1: बहुत अच्छा।
0: कह देना साहब को सरकारी काम से कहीं जाना है।
1: बहुत अच्छा
0: अच्छा, जरा रुको जरा रुको, ये चिट्ठी भी डाक में डाल देना।
1: बहुत अच्छा।
0: बाकी मिलने पर तुम्हारा हेलस्त को, मिस्टर वेसेलविच ट्रिपिचकिन, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, सेंट पीटर्सबर्ग। ये लो
1: लाइए।
0: इन दो दिनों में अच्छी खासी कमाई हो गई।
8: मैं आ सकती हूँ?
0: आइए आइए, वो आए हमारे कमरे में, हमारी किस्मत। मिस मारिया, मैं आपकी ही राह देख रहा था।
8: शायद आप किसी जरूरी काम में व्यस्त थे, मैंने आकर।
0: मेरे लिए आपसे बड़ा क्या काम हो सकता है मिस मारिया। ओहो, आप शर्माती हैं तो मैं जैसे अपनी सुध-बुध भूल जाता हूँ।
8: सुनिए, क्या आप मेरी नोटबुक में कुछ कविताएं लिख सकेंगे?
0: क्यों नहीं, काश काश कविताओं की जगह मैं अपना प्यार लिख सकता।
8: प्यार? वो क्या होता है?
0: ये भी जान जाएंगी। मेरे मेरे नजदीक आइए।
8: हम सीधे साधे आदमी हैं, इसी से आप हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं। मुझे जाने दीजिए।
9: मारिया, तू यहाँ, ये क्या बदतमीजी है?
0: मेरी सहायता कीजिए मैडम, मैं अब मारिया के बिना नहीं रह सकता। मैं इन्हें जीवन संगीनी बनाना चाहता हूँ।
9: ओह, सुन लिया मारिया, तेरी जाति और बेवकूफी के बावजूद आदरणीय मेहमान तुझसे विवाह करना चाहते हैं।
8: मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ।
0: मैडम, हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए।
10: हुजूर, हुजूर, हुजूर, मेरे ऊपर दया कीजिए। शहर के व्यापारियों ने जो मेरे खिलाफ शिकायतें की हैं, उनमें से एक भी सच नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
9: इस वक्त ये बातें बंद कीजिए ना। जानते हैं, साथ में हमारी मारिया का हाथ मांगा है।
10: मूर्ख कहीं की। हुजूर, आप मेरी पत्नी की बात पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिएगा, ये तो शुरू से ही मूड मती रही
0: पर है। ये सच कह रही हैं, मैं मारिया से विवाह करना चाहता हूँ।
10: हुजूर, इस नाचीज से मजाक कर रहे हैं।
0: मेरी बात पर विश्वास कीजिए।
10: मेरी बेटी की शादी इंस्पेक्टर जनरल से, इंस्पेक्टर जनरल से। ओ एंटन एंटोनोविच, आज से तेरी दुनिया ही बदल गई।
1: हुजूर, गाड़ी तैयार।
0: हम अभी आते हैं।
10: क्या हुजूर यहाँ से विदा हो रहे हैं?
0: हाँ, वो एक दिन के लिए घर जाना चाहता हूँ। मेरे चाचा बीमार हैं, बस परसों तक वापस आ जाऊंगा।
10: ठीक है ठीक है। मेरा ख्याल है हुजूर, इस वक्त आपके पास पैसे कम हो?
0: नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
10: तो सेवा में कितना पेश कर दूं?
0: आप मुझे 200, मेरा मतलब है 400 रूबल दे दीजिए।
10: ये लीजिए, एकदम नए नोट हैं।
0: नए नोट, नई आशा। अच्छा, मैं चलता हूँ।
8: मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी।
0: प्रतीक्षा करने में बहुत आनंद आता है मिस मारिया।
10: आपकी यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
10: है ना, तुमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अचानक एक दिन हमारी किस्मत के सितारे जगमगा उठेंगे। कल तक तुम एक मामूली मेयर की बीवी थी, लेकिन आज तुम ऐसे आदमी की सास हो जिसके आगे बड़े बड़े अफसर सिर झुकाते हैं।
9: सुनिए जी, अब हम लोग इस छोटे से शहर में नहीं रहेंगे। यहाँ तो अभी से मेरा दम घुटने लगा है।
10: यहाँ रह कैसे सकते हैं? शादी के बाद इंस्पेक्टर जनरल हमें फौरन पीटर्सबर्ग ले जाएंगे। एना, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन मेयर नहीं रहूंगा।
9: छी छी छी, आप जैसे आदमी के लिए मेयर बनना डूब मरने की बात है। देखना, आप जल्दी ही जनरल या कोई दूसरे बड़े अफसर बन जाएंगे।
10: और फिर देखना, मैं शहर के इन बदमाश व्यापारियों की कैसी मट्टी पलीत करता हूँ। बेईमान कहीं के, मेरी शिकायत करने आए थे।
9: छोड़िए जी, हमें इन कबूतरों के मुंह नहीं लगना।
10: हाँ बिल्कुल।
9: अब आप अपना तौर तरीका बदलिए।
10: हाँ।
9: इन घटिया लोगों के साथ बैठना उठना छोड़िए। काउंट, लॉर्ड वगैरह, बड़े बड़े आदमियों में बैठना उठना है हमें।
10: ओ, आओ भाई, बाबा डॉग, आओ आओ आओ आओ।
6: मेयर साहब, मेयर साहब, आपको और मैडम एना को बाब चिंस्की की ओर से बहुत बहुत बधाई
7: और डॉक चिंस्की की ओर से भी बहुत बहुत बधाई।
10: शुक्रिया शुक्रिया। ओहो आइए आइए मिस्टर स्कूल सुपरिटेंडेंट, तशरीफ लाइए।
4: मुबारक हो मेरा साहब, मुबारक हो। मिसेज है ना, मेरी पत्नी भी आपको बधाई देने आई है।
11: भाई मेरी भी हार्दिक बधाई है मेरा साहब।
4: मेरी मुबारकबाद भी कबूल फरमाइए जनाब।
12: लेकिन ये बात बनी कैसे?
10: इसमें आश्चर्य की क्या बात है लियाकत कैप्टन, अफसर पहली भेंट से ही मुझसे बड़ा खुश था। उसने मुझसे मारिया का हाथ मांगा।
9: लेकिन बहुत ही तहजीब से मुझसे कहने लगा, मैं तो आपके गुणों पर मुग्ध हो गया।
8: मम्मी ये तो उन्होंने मुझसे कहा था।
9: मारिया बीच में नहीं बोला करते। फिर कहने लगा, अगर आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है तो मैं इस जीवन से मृत्यु ही अच्छी समझता
8: हूं। ओ मम्मी ये भी उन्होंने मेरे लिए कहा था।
9: हाँ हाँ मैं कब कहती हूँ कि मेरे लिए कहा था।
10: मित्रों अब मैं आपका साथ छोड़कर पीटर्सबर्ग चला जाऊंगा, शायद वहां मुझे जनरल बना दिया जाए।
11: अवश्य जाइए अवश्य जाइए, बड़ा जहाज गहरे पानी में चलता हुआ ही छोड़ देता है।
4: आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली।
5: कई परिश्रम और ईमानदारी का फल कभी न कभी मिलता ही है।
11: हुजूर इस गरीब को भूल न जाइएगा, अब मुझे आप ही का सहारा है।
5: कोई अच्छा मौका हो हुजूर तो इस नाचीज हेल्थ ऑफिसर को भी याद कर लीजिएगा।
10: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर।
9: ओफो, आपकी आदत मुझे बहुत बुरी लगती है।
10: क्या?
9: अभी से दुनिया भर से वादे करने लग गए हैं। पता नहीं पीटर्सबर्ग में आपको इन छोटी छोटी बातों के लिए फुर्सत मिलती भी है या नहीं।
13: अंधेर हो
10: क्या हुआ?
13: अभी डाक भेजने की तैयारी कर रहा था तो उस अफसर द्वारा लिखी चिट्ठी पर मेरी नजर पड़ी। लिफाफे पर लिखा था, मिस्टर टिपिचकिन पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट सेंट पीटर्सबर्ग। पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट पढ़कर मेरे तो छक्के छूट गए। मैंने सोचा हो ना हो जरूर बड़े पोस्ट ऑफिस को मेरी शिकायत भेजी जा रही है। मैंने उसे खोलने का इरादा किया।
10: सर तुम्हारी ये मजाल, इतने बड़े अफसर की चिट्ठी तुमने।
13: पूरी बात तो सुनिए साहब।
10: क्या?
13: पहले तो मैंने लिफाफे को ऐसे ही थैले में डाल दिया। लेकिन जैसे जैसे मेरे दिल से बार बार आवाज आने लगी, लिफाफा खोल ले, लिफाफा खोल ले, नहीं खोलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। आखिर धड़कते दिल और कांपते हाथों से मैंने लिफाफा खोल ही
10: दिया। तुमने इंस्पेक्टर जनरल की चिट्ठी खोलने की जरूरत?
7: हाँ, मेरे साथ ठीक है।
13: लेकिन चिट्ठी पढ़कर मालूम हुआ कि वो इंस्पेक्टर जनरल नहीं था। कोई लफंगा था।
10: क्या बकते हो तुम?
13: मैं सच कह रहा हूँ मेयर साहब, आप कहें तो वो चिट्ठी पढ़कर सुना दूं। सुनिए, प्रिय मित्र टिपिचकिन, तेरी नई रचना के लिए एक मनोरंजक सच्ची घटना भेज रहा हूँ। ये मेरी बहादुरी का नया किस्सा है।
10: अरे
13: खाली जेब होने पर भी मैं किसी तरह इस शहर में पहुंच गया। होटल का मालिक मुझसे तंग आकर मुझे जेल भेजने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक मेरा भाग्य जाग उठा। यहाँ के भोंदू अधिकारियों ने मेरी कीमती वेशभूषा और रौब दाब देखकर मुझे इंस्पेक्टर जनरल समझ लिया। और नतीजा ये कि अब मैं ठाट से मेयर की कोठी आबाद कर रहा हूँ और लोगों से पैसा समेट रहा हूँ। आगे सुनिए आगे सुनिए, आगे लिखा है, तुम भी यहाँ के कार्टूनों से मिल लो। एक तो मेयर साहब हैं, एकदम गधे जैसा दिमाग, शक्ल उल्लू जैसा है।
10: ये कहीं नहीं लिखा, तुम अपनी तरफ से पढ़ रहे हो।
13: यहाँ का हेल्थ ऑफिसर बिल्कुल सर्कस का जोकर है। स्कूल सुपरिंटेंडेंट के सारे शरीर से हींग की बदबू आ रही है।
4: क्या बदतमीजी है ये?
13: एक जज है, वो अव्वल दर्जे का ऊंचा लगता है।
10: क्या कहा?
13: और यहाँ के पोस्ट मास्टर भी हैं, वो साहिबान, मेरा ख्याल है आगे पढ़ना
7: पड़ेगा। पढ़िए पढ़िए। आप पढ़िए, आप पढ़िए।
11: यहाँ एक पोस्ट मास्टर भी है जो सख्त बेईमान है और तुम्हारे चपरासी की तरह घटिया शराब पीता है। खैर कुल मिलाकर ये लोग।
10: बंद करो ये बकवास।
0: मैं तो कहीं कहा नहीं रहा, वो बदमाश सारी जगह मेरी बेवकूफ़ी की कहानी सुनाएगा, सारी दुनिया मुझ पर हंसेगी। मेरी अकल पर तो पर्दा पड़ गया था, लेकिन तुम लोगों को किस मक्खी ने काटा था जो इंस्पेक्टर आ गया कि नारे लगा बैठे, बताओ।
11: मेयर साहब, सबसे पहले बाब और डाब ने ही ये गप उड़ाई थी।
4: जी हाँ, ये बाब और डाब की ही करतूत है।
6: नहीं नहीं भला, मैं ऐसी झूठी बात कैसे कहता?
7: भगवान का नाम लीजिए, मेरी इतनी जुर्रत हो सकती?
10: तुम दोनों ठग इसी वक्त मेरी आंखों से दूर हो जाओ, निकलो यहाँ से। कम वक्तों ने मुझे चौपट करके रख दिया, मैं कहता हूं चले जाओ यहां से।
0: हे भगवान, हे भगवान, अब मेरा क्या होगा?
14: है? कौन?
15: मेयर साहब हाजिर हैं।
14: क्या बात है, तुम कौन हो?
15: सरकारी हरकारा।
14: सरकारी हरकारा?
15: पीटर्सबर्ग से इंस्पेक्टर जनरल साहब अभी यहाँ पधारे हैं, होटल में रुके हैं। उन्होंने आज्ञा दी है कि आप और दूसरे सभी अफसर फौरन उनके

ये था नाटक इंस्पेक्टर जनरल। दूसरा और आखिरी भाग ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, भाग लेने वाले कलाकारों के नाम बृजेंद्र मोहन, किशोर कपूर, बलदेव राम नागर, तिलक राज मेहता, जफर अहमद, आर एच चिश्ती, कमला कुमारी चोपड़ा, वीता नवल सिंह, शमशेर सिंह ठाकुर, कुलभूषण खरबंदा, बी एल टंडन, बी आर एल सक्सेना, करतार सिंह पवार और यतीन्द्र श्रीवास्तव। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत और ये प्रस्तुति थी विविध भारती की। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

पिटारा में आज उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: 1984 दुनिया
1: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का बंजा
0: 1985 जमाना
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
3: क्या
0: 1993 फिल्म

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए दूसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अमजद ने कहीं और दूसरी जगह यूनिवर्सिटी में भी कोई होता है इस किस्म का एक प्ले खेला जो जिसमें अमजद को ए मेरे वतन के लोगों नाम से प्ले खेला था अमजद खान ने, उसको वहाँ ट्रॉफी मिली थी। तो कादर खान ने फिर कहा, यार रमेश तुम हमेशा ट्रॉफी ले जाते हो। मैंने कहा भाई मैं क्या, स्क्रिप्ट अच्छी होती है, ये होता है होता है। तो मैंने कहानी पढ़ी थी कृष्णचंद्र की, जामुन का पेड़। मैंने कहा यार इस पे बड़ा अच्छा प्ले बन सकता है। तो सागर साहब और कादर खान दोनों साथ में खड़े थे
2: जी।
1: तो कादर खान हमारे प्ले में मैं आग होता हूँ, मैं मेन रोल करता था, मैं कॉमेडियन का रोल करता था, मेन हीरो का रोल करता था।
2: अच्छा।
1: तो वही हम खड़े थे चर्च गेट पे गेट आउट के बाहर, और मैंने कहा यार ये देखो बड़ा अच्छा, कहते यार मुझे दो मैं लिख के दूंगा। मैंने कहा ले लो। जब उसने प्ले लिखा तो मैंने कहा भाई वो प्ले लो यार, कंपटीशन नजदीक आ रहा है। चलो रमेश प्ले बहुत अच्छा बन गया, तुम साले हर बार ट्रॉफी जीतते हो, इस बार मैं ट्रॉफी जीतता।
2: हाईजेक हो गया प्ले।
1: हाँ। तो वो प्ले ले लिया उसने।
2: हाँ।
1: अब मैंने दूसरा, मैंने तीन बंदर प्ले खेला
2: जी,
1: तो जिसमें मेरे एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला लेकिन ट्रॉफी कादर खान को मिली।
2: इस बार वो ले गए
1: लास्ट। और इसी साल जो है फिर झगड़े हुए, मारामारी, खून खराबा हुआ। मुंशी जी की वाइफ वाइन स्टेज पे,
2: हाँ,
1: के एम मुंशी की वाइफ
2: जी
1: भारतीय भवन के मालकिन, उन्होंने कहा भाई बस लास्ट ईयर है, आइंदा यहाँ कंपटीशन नहीं होगा।
2: हाँ।
1: और 13-14 साल से 52 से कंपटीशन चलता आ रहा था या 50 से चलता आ रहा था, और ये ईयर था 68 या 69, वो कंपटीशन बंद कर दिया 68 में।
2: बाद में फिर शुरू हुआ,
1: फिर वो उधर फिर बहुत बाद में किया, अभी किया
2: जी।
1: फिर वो किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि फिर क्या हुआ कि मैं जब इप्टा में काम करना शुरू हो गया, कि ये हुआ कि आखिरी क्षमा प्ले हो रहा था जो मैं जिक्र कर चुका था आपसे
2: जी,
1: कि ये प्ले था यादगार मुशायरा, दिल्ली का यादगार मुशायरा।
2: तब तक आखिर क्या थी?
1: अब मैं कॉलेज में पढ़ चुका था समझिए 23 साल,
2: और ये जो टीनेज रोल और बच्चों के रोल
1: वो तो बंद हो चुके थे, बहुत पहले पुरानी बात होगी। तो अब ये जो इनके साथ 68 में मैंने कुछ एक दो प्ले पंजाबी में किए, जो मैं हिंदी में ट्रॉफी ले चुका था, मनमोहन कृष्ण जी के साथ, अचला सिद्धदेव के साथ, इनके साथ वो किए, और पंजाबी में वो तुझाए तुझा पाशी शतरंज के मोरे को पंजाबी में शतरंज दे मोरे के नाम से खेला
2: जी।
1: और बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा देखने आए थे, और बी आर चोपड़ा ने बहुत हंसते रहे, यश चोपड़ा फर्स्ट रो में बैठे थे, जोर से हंसते थे, और प्ले ख़त्म होते ही उन्होंने कहा बेटा तुम आ जाओ, बी आर चोपड़ा साहब ने कहा मुझसे मिलने आओ। मैं मनमोहन जी के साथ उनके ऑफिस चला गया, बोले तुम पंजाबी पिक्चर मेरे लिए डायरेक्ट करो। उन्होंने पंजाबी में प्ले देखा था। मैंने कहा साहब मुझे तो ग्रामर आती ही नहीं फिल्म की, तो मुझे आप असिस्टेंट रख लीजिए, मैं ग्रामर सीख लूँगा फिर करूँगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तो कोई पिक्चर चल नहीं रही हमारी, जब कोई अनाउंस होगी तो तुम आ जाना। तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कम्प्लीट हो जाएगी, और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
2: बिल्कुल।
1: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है, और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे, एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आँख से, तो मैं काफ़ी
2: आगे
1: चाहूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रखो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
2: जी।
1: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात। नेक्स्ट डे मैंने जाके वो गुजराती में प्ले देखा, धुम्मस। संडे था, संडे इनका प्ले होता है जैन कॉलेज में, और अरविंद जोशी रोल कर रहे थे और उसमें उनका बेटा जो आज हीरो है, तो उसने उसमें अरविंद जोशी मेन रोल भी कर रहे थे, डायरेक्ट प्रवीण जोशी ने किया था शायद। और अरविंद जोशी कौन है, ये शर्मन जोशी के फादर, शर्मन जोशी जो अभी हीरो है इनके फादर। तो वो प्ले मैंने सारा गुजराती में देख लिया, बम्बई में रहता हूँ इसलिए गुजराती सब समझ आती रही, गुजराती दोस्त भी थे, अमृत पटेल मेरा दोस्त था गुजराती का, मेरे नाटकों में उनके साथ काम भी करता था, हिंदी में मेरे साथ खालसा में काम करता था। मैं आया सेट पे, वह कोने में स्क्रिप्ट पड़ी थी हिंदी की, कॉपी लेके पढ़ डाली कोने में, अभी लाइटिंग वाइटिंग चल रही है, एक सेट था बंगले का जिसमें पूरी पिक्चर उस बंगले में ही है, वो पढ़ डाली। अब मैं एकदम क्लियर कट, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
2: Yes.
1: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है पांच आने में, फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुर्ला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुर्ला एक आने का टिकट, वहां जाता पांच आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, ठन्नी में
2: काम बन जाता था,
1: काम बन जाता।
2: कौन कौन सी फिल्में देखी
1: सब होगी? कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो मैंने देखी है, बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में, बी आर चोपड़ा की सारी, विश्वनाथ की सारी,
2: मतलब
1: सारी फिल्में जो अच्छी फिल्में कहलाती थी वो सारी फिल्में मैं छोड़ता नहीं था। पहले दिन जाता था, लाइन लगाता था पांच आने में, वहाँ पे आगे कई बार ब्लैक वाले उठा के पीछे फेंक भी देते थे, छोटा सा दिखता था उठा के पीछे कर देते थे, जो मैं पहला नंबर था तो 25वां नंबर हो जाता था लेकिन टिकट मिल जाता था। तो वो पांच आने का लेके बैठता था, देखा करता था।

0: मैं क्रिटिक भी बन चुका था तब तक, बहुत सी बातें, मतलब इस सेट पे जब मैंने सब देख लिया तो पांच चार राइटर वहां थे, अख्तर मिर्जा, अख्तर उलेमान, सीजे पावरी, ये सब वहां पे थे। बी आर चोपड़ा जी भी सेट पे कई बार आते थे, यश चोपड़ा जी खुद थे, तो ये सेट पे सब रहते थे, क्योंकि एक महीने की पिक्चर है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए।
1: हाँ,
0: देख लो कोई लास्ट मोमेंट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो सबकी ड्यूटी थी कि आप सुबह टाइम पे आ जाओ 9:30 और शाम तक 8 बजे तक चलती है शूटिंग, रहो सब। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया कहाँ अटका हुआ है, तो मैं भी अपना, क्योंकि मैं धूमत भी देखा, ये भी देखा, और वो क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम क्या समझ रहे हैं, ये क्यों नहीं हो, ऐसा क्यों, उनकी क्वेश्चन जो थे उसका आंसर मैं सोचता जा रहा हूँ। और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। अचानक वो बी आर चोपड़ा साहब ने मुझे डांट दिया, चुप, कल का बच्चा। मैं कोने में चला गया, मतलब मैंने कोई गलत बात कर दी, बड़े बड़े राइटर आप डिस्कस कर रहे हैं, बीच में अपनी होशियारी दिखा रहा हूँ, ये उनके हिसाब से था, कोने में बैठ गया मैं। जब सब डिस्कशन हो गई, बात बनी नहीं उनकी, फिर उन्होंने कहा यहाँ किसी ने कुछ बोला था, मैंने स्कूल के बच्चे की तरह हाथ ऊपर किया, सर नीचे ही रखा, और उन्होंने कहा हाँ बोलो, तो मैंने कहा ऐसा कर ले तो कुछ जो भी छोटी मोटी, तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे, यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया, इसको जबरदस्ती 5 बार से नोट कर, कोने में बैठा साहब आगे चले, फिर एक जगह और रुक के कहीं इसी तरह डिस्कशन हुई, मैं भी अपने उस तरह सोचने लग गया। जब ये सब बोलते रहे इनका, मैं जल्दी कंप्यूटर दिमाग की तरह, राइटर बड़े क्या कह रहे हैं, इसमें से चीज निकालूं, करते करते करते करते मेरी चीज मुझे समझ आई, कुछ समझ आई, तो मैंने फिर चुपचाप बोला नहीं, शोर नहीं किया, हाथ ऊपर किया, तो चोपड़ा साहब ने कहा हाँ बोलो बेटे, मैंने कहा ऐसा कर ले तो, सारे राइटरों ने कहा बहुत अच्छे बेटा, वाह
1: वाह
0: यही चाहिए था,
1: क्या बात है,
0: और वो सब सीनियर राइटरों ने अप्रूव किया, ओके होगी चीज। अब साहब लास्ट डे जब था, तो सुबह से हम लोगों ने काम शुरू किया, सेट टूटना था नेक्स्ट डे, और एंड में लोग सब थक के सो गए, कुछ शॉट यश जी ने लिखवा दिए थे, ये शॉट भी लेने हैं विदाउट आर्टिस्ट है। उस वक्त मैं और ऑपरेटिव कैमरामैन रोमेश भल्ला जी थे,
1: जी जी,
0: हम दो रह गए थे, बाकी सब सो चुके थे, मतलब फुल 24 घंटे काम कर चुके थे ना।
1: हाँ।
0: लेकिन हम तो अभी अलर्ट थे
1: जी,
0: हम तो अभी बच्चे थे, जोश वाले, तो हमने वो शॉट यश जी के पेपर लिया।
1: हाँ।
0: और वो शॉट ले लिए,
1: वाह।
0: तो यश जी की अचानक आंख खुली, तो उन्होंने कहा ये वो यार वो शॉट ले लो, तो यश जी हमने लिए आप देख लीजिए, पर वो तो उस वक्त तो देख नहीं सकते, तो उन्होंने कहा जी जैसा आपने लिखा वैसा लिया, ऐसा घुमाया कैमरा, ये यूं गोल गोल कैमरा घूमता है सेट के ऊपर, तो नीचे लोग सोए हुए थे इसलिए हमको थोड़ा ऊपर रखना पड़ा, ये बताया उनको कैसा किया, और ये भी ले लिया, वो चीज़ उसका क्लोजअप भी ले लिया, उसका भी दरवाजे का जो आपने कहा वो ले लिया, ये ले लिया, सब ले लिया। और रमेश वाला पुराना आदमी था उनका, जो ऑपरेटिव कैमरा, उनको भरोसा था कि ये झूठ नहीं बोल रहे होंगे, और वो जो कुछ जो बातें मैंने बोली भी थी उनको मेरी समझ में थोड़ा सा यकीन भी हो चुका था। अलबत्ता वो सेट टूट गया नेक्स्ट डे, उन्होंने चीज़ें देखी, वो पिक्चर में लगी हुई भी है, वो वाले शॉट लगे हुए। अब साहब वो पिक्चर कम्प्लीट हो गई एक महीने की, अब मैं खाली हो गया, अब उनकी कोई और पिक्चर चल नहीं रही, और मैं चला गया अपना, अपने आप को समझने लग गया था कि अभी है नहीं, मैं कहीं और काम में, तो कहीं और काम करने लग गया, कोई एक जगह जिसके यहाँ कुछ छोटी पिक्चर बन रही है उसके साथ 2-4 दिन काम कर लिया, एक और पिक्चर बाहर वाला कोई आया था, उसने कहा मैं फॉरेन में पिक्चर बनाना चाहता हूँ ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, तो वो कर रहे थे, तो इतने में मैसेज आया यश जी का, यश जी का मैसेज ऐसे आया कि मैं गया था, मेरा एक प्ले ओपन हो रहा था तन्हाई, जिसमें शौकत कैफी रोल कर रही थी मेन फिल्म एक्टर, रिटायर्ड फिल्म एक्ट्रेस का,
1: शबाना आजमी की माँ,
0: हाँ, और उसमें भरत कपूर उनका बेटे का रोल कर रहा था
1: जी।
0: तो मैंने कहा कि आप प्ले देखने आई, तो वहाँ शशि कपूर शूटिंग नीचे कर रहे थे, उनके पास भी गया, मुझे पता है थिएटर के बहुत वो हैं, तो मैंने कहा शशि जी ऐसा प्ले है मेरा, आप देखने आइए, तो कह रहे हैं बेटा मैं पहले शो पे कभी आता नहीं हूँ, 4-5 शो के बाद आता हूँ, मैं बोला आज देख लीजिए, फिर 5वां फिर देख लीजिए, गलतियाँ ही पता चल जाएंगी हमको, समथिंग लाइक दैट। तो अलबत्ता वो भी आ गए देखने, प्ले तेजपाल हॉल में खेला
1: जी।
0: तो प्ले देखने के बाद यश जी ने बोला बेटा तुम कल राजकमल स्टूडियो आ जाओ। फिर आहिस्ता से कहा, मैं भाई साहब से अलग होके कंपनी अपनी खोल रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा ऐसे फॉरेन का एक आदमी आया, वो चाहता है कि फिल्म बनाऊँ यहाँ पे। नहीं नहीं बेटा, तुम आओ मेरे पास। तो नेक्स्ट डे में आया, इन्होंने अपनी यशराज फिल्म शुरू करनी थी। वहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐसे पिक्चर बना रहा हूँ, मैं 3 पिक्चर बनाऊँगा। एक में ये मेरा चीफ असिस्टेंट होगा फलाना आदमी, फिर दूसरा बताया ये असिस्टेंट है मेरा, ये दूसरी पिक्चर में जो प्राण मेहरा डायरेक्ट करेंगे उसमें ये चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, और एक पिक्चर मनमोहन कृष्ण डायरेक्ट करेंगे जिसमें तुम चीफ असिस्टेंट होगे।
1: ओके।
0: तो मैंने कहा मैं असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। चीफ असिस्टेंट बनने से मेरा कोई नहीं, मुझे आप 3rd असिस्टेंट रख लीजिए, 5वां रख लीजिए, मैं आऊँगा। तो मैं उनको फॉरेन वाले को मना कर दिया कि साहब मैं इनकी रेगुलर कंपनी शुरू हो रही है तो मुझे नौकरी मिल रही है, मैं जा रहा हूँ।

0: तो जैसे ही तब यहाँ पे पालील पे रहने आ गए थे
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे इतने पैसे मिलेंगे तुम्हें उसके लिए, असिस्टेंटी के लिए। तो मैंने हल्का सा, मैं बीच में थोड़ी देर, मैंने बताया आपको सच्चे वाले में नौकरी की, जब मैं प्ले डायरेक्ट करता था ना,
1: हाँ।
0: शफी नामदार, फारूक शेख वगैरह, तो सच्चे वाले में नौकरी भी करता था, वो टेम्परेरी जॉब था
1: जी।
0: तो वो 15 महीने मिला, 3-3 महीने का एक्सटेंशन होता था
1: जी जी जी।
0: तो 15 महीने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमको नहीं चाहिए आप। तो मैंने पार्टी दी लोगों को कि मैं फ्री हो गया, ये कुलदीप वगैरह सबको पार्टी दी कि अब मैं फ्री हूँ।
1: हाँ।
0: तो फिर मैं आके इप्टा में आके मैंने ये नाटक शुरू किए थे, या आज़ाद हो गया और मेरे को कोई ड्यूटी नहीं कुछ नहीं। तो अब जब मैं ये सब कर रहा था ऑलरेडी, तो मुझे वो जो 400 रुपये महीना मिलता था सचिवालय में, तो जो भी यश जी ने मुझे तनख्वाह बोली, तो मैं यश जी वहाँ क्लर्की के 400 रुपये मिला करते थे, यहाँ तो असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, तो देख लीजिए जो देना है आप दे दीजिए, मैं ले लूँ। तो उन्होंने मेरी तनख्वाह 400 रुपये रखी
1: जी जी। वाह वाह।
0: तो 400 रुपये का ये फायदा था कि कोलीवाड़ा से पाली हिल तक 1 रुपया लगता था टैक्सी का।
1: अच्छा।
0: मैं टैक्सी में बैठ के आता था उनके घर में 1 रुपये में, तो 30 रुपये महीने का मेरा वो खर्चा था। बाद में उनकी गाड़ी होती थी।
1: हाँ।
0: उनके साथ राजकमल स्टूडियो जाते थे उनकी गाड़ी में बैठ के, वापस उन्हीं के घर पाली हिल पे आते थे। फिर मुझे जाना होता साधना स्कूल में रिहर्सल के लिए ड्रामे की, वो अपनी गाड़ी भेजते थे, बेटा रामचंद्र को ले जाओ गाड़ी जाओ, तेरे को छोड़ के आ जाएगा। वो मुझे एक माँ छोड़ देता था, मैं आ जाता। तो इन चीज़ों में जो लिंक वाले बातें याद आती है याददाश्त में, हुआ ये कि कुछ बम्बई बंद हो गई, हम वापस जब जाते थे ना, तो ड्रामे की जो रिहर्सल कर रहे थे उसमें फारूक शेख, भरत कपूर,
1: हाँ,
0: रमन कुमार,
1: हाँ,
0: तो ये सब काम कर रहे थे। तो हम लोग बस की स्ट्राइक हो गई तो ट्रक में जाया करते थे, तभी एक जमाना था थोड़ी देर तक BST की स्ट्राइक हो गई थी
1: जी जी।
0: तो ट्रक वाला 4 लेता था या 8 लेते थे, और भरत कपूर ने उन दिनों एक फिल्म में हीरो का रोल किया था, वो पिक्चर का नाम था गुप्त ज्ञान, वो सेक्स के बारे में कुछ, ये डॉक्टर थे उसमें। जैसे हम ट्रक में बैठते थे, कुछ लोग ऐसे मजदूर टाइप के लोग पास आते थे इनके, डॉक्टर साहब हमने आपसे कुछ पूछना है। तो एक्चुअल देखिए, एक्चुअल डॉक्टर समझने लग गए, और हम लोग सब जो है चुप बैठे थे। वो तो हम दादर सब लोग उतरते थे, वहाँ से पैदल खालसा कॉलेज तक, वहाँ भाजी पाव वगैरह खाते थे, फारूक शेख अपना चला जाता था बाइक वाला अपने घर मेमनी बिल्डिंग में, बस में बैठ के, और मैं कोलीवाड़ा पैदल वहाँ से किंग सर्कल से घर पे। तो ऐसा जिंदगी जो चल रही थी, नाटक हो रहे हैं साथ में, ये यश चोपड़ा का ये काम शुरू हो गया।
1: ये दाग फिल्म थी
0: ये पहली स्वीट दाग,
1: और आप दाग चीफ असिस्टेंट थे?
0: नहीं, पहले मैं चौथा असिस्टेंट था, तीसरा। तो वो क्या हुआ, जो चीफ असिस्टेंट साहब थे बड़े वाले जो नंबर 1 थे, वो उनको इंटीरियर डेकोरेशन कास्ट्यूम की बहुत समझ थी, वो ज़्यादा उस तरफ का करते थे। तो काम जो है वो मुझे, क्योंकि नाटक वाला हूँ, डायलॉग देना, रिहर्सल करवाना,
1: चेंजेस करना
0: वो सब मुझे वो था, क्लर्की करना मैं लिखता था, कंटिन्यूटी वो सब करना, तो ये सारा काम मैं करता था। अलबत्ता एक साहब गए, उसके जो दूसरे साहब थे वो यश जी के साथ बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते रहे, वो नाटक वाले नहीं थे, सिनेमा वाले नहीं थे, उधर BA जब इन्होंने इनके संग की थी वहाँ नौकरी कर रहे थे, यश जी ने बुला लिया, अपना दोस्त है बचपन से साथ में थे उनके।
1: हाँ हाँ।
0: तो वो यहाँ आ गए, अब उन्होंने कहा देखो वासुदेव धीर,
1: हाँ
0: भाई देखो पैसे का मामला है, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, ये तुम संभालो। तो उनको कैश ये सब प्रोडक्शन वो सब पैसे का मामला उन पे डाल दिया, वो बाकी चीज़ें कर कास्ट्यूम वगैरह कर रहे थे और सेट का देखते थे और कलर स्कीम का सोचते थे, और ये सारा काम आता था मुझे, टेक्निकल मेरे ऊपर आ गया। क्लैप भी देता था, कंटिन्यूटी भी लिखता था, डायलॉग भी देता था।
1: हाँ।
0: तो वो सारी चीज़ों से मेरी जो है ना
1: ट्रेनिंग होती,
0: ट्रेनिंग हो गई।

0: नीयत भर ली,
1: मैंने हंसकर हामी भर ली,
0: यादें छूटे

0: चाहे लग जाए हथकड़िया मैंने तेरी बाह पकड़ ली, अब चाहे लग जाए हथकड़िया मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मन तुझ पे नियत कर ली,
1: मैंने हंसकर हामी भर ली,
0: ओ यारी छूटे।

0: या दुनिया मैंने तेरी बाह पकड़ ली, अब चाहे रब रूठे या दुनिया मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मैंने तुझ पे नियत कर ली,
1: मैंने हंसकर हामी भर ली,
0: ओ यारी छूटे ना फूटे या माथा,
1: अब चाहे कांटे मिले या कलियां,
0: अब चाहे लग जाए हथकड़ियां,
1: अब चाहे घर छूटे या सखियां,
0: अब चाहे रब रूठे या दुनिया, अब चाहे मार रूठे या

0: थप थप करते करते पहले ही मिल, और साथ में एक पिक्चर में ऑलरेडी राजेश खन्ना के साथ पहले वहां कर लिया था, और राजेश खन्ना के साथ काम करते हुए उधर ये था कि ऐसा कुछ हो गया था कि डब्बा जो फिल्म इंडस्ट्री में खाना आता था, खाना इन लोगों ने बंद कर दिया था, क्योंकि लोगों ने शिकायत लगाई किसी को चिकन नहीं मिला, किसी की टांग नहीं मिली मुर्गी की। उन्होंने कहा भाई मैं पैसे दूंगा, अपने आप खाओ, ठीक है, ये शिकायतें मत करो, नाटक मत करो मेरे। तो हम लोग कैंटीन में जाके खाना लग ले, और गुरनाम सिंह जो था हमारा एक्टर था वो इनका सेक्रेटरी था राजेश खन्ना का, उसने आया, उसने कहा काका नाराज हो रहा है, रमेश तू क्या कर रहा है? मैंने खाना खा रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तेरे लिए खाना मंगाया उसने, डब्बा घर से आया हुआ है, वो ले गया मुझे वहाँ पर। तो वो जो हम साथ लंच में खाना खाते थे, जो हमारी गपशप होती थी, सिनेमा की बातें होती थी, चीज़ों की बातें होती थी, और मैं जैसे ही थर्ड बेल बजे उससे पहले मैं दरवाजे पर जाके अंदर लेट ना हो जाऊं, और एक दिन मैं लेट होगा तो मुझे रवि चोपड़ा ने पकड़ लिया था कि देखो काका के साथ खाना खाते हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम लेट आओ, सॉरी आंदा नहीं होगा। तो ये आप फिर पिक्चर दाग में राजेश खन्ना
1: हीरो हो गई।
0: हाँ, और दाग जो चल रही है तो मेरी इम्पोर्टेंस बहुत थी, बिकॉज राजेश खन्ना बात सुनता है, डायलॉग करता है, रिहर्सल करवा रहा है मेरे साथ, कई बार बहुत लंबी चीज है तो बोला रमेश लिख दो वहां पे सामने, रीडिंग करवा लो मुझसे और सामने लिख भी दो, अचानक में नजर मुझे पड़ेगी बहुत लंबे लंबे डायलॉग है, कोर्ट सीन में लंबे डायलॉग थे, तो वो मैंने लिख दिए वहां पे, उन्होंने कोर्ट सीन में आता था ग्लांस करके वो देख भी लिया। अगर आप मैं बोल चुका हूँ तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि राजेश खन्ना की यूं क्यों गया।
2: हाँ।
0: तो ऐसा भी था, तो अलबत्त खैर वो दोस्ती का जो है पूरा फायदा जो हुआ मुझे राजेश खन्ना की। अब मुझे यश जी ने कहा कि तुम पिक्चर डायरेक्ट करो, मैं तुम्हें।
1: लेकिन दाग जब रिलीज हुई तो वो तो सुपरहिट हो गई,
0: सुपर
1: बहुत चली,
0: बहुत चली,
1: गाने बहुत चले,
0: बहुत चले।

0: और साथ में गुलशन राय जी ने जो फाइनेंस करते थे
1: जी,
0: उन्होंने अपनी पिक्चर यश जी को दी जो शीला बनाने के लिए,
1: सेकंड जो दाग के बाद,
0: दाग के बाद उसमें देवानंद साहब थे, और देवानंद साहब, राखी, हेमा मालिनी जी, और हम दार्जिलिंग में शूटिंग वूटिंग करने गए, प्राण साहब थे, प्राण एक्टर साहब, इन सब के साथ मेरी बड़ी तालमेल, क्योंकि मैं डायलॉग करवाता था तो हो गया, तो खैर उसमें जो भी एज स्टेज का आदमी कुछ बातें बोलता था तो मुझे जवाब ये मिलता था, कमर्शियल पिक्चरों में ऐसा होता है
1: जी जी,
0: तो मेरे कोई क्रिटिक वाली बात मैं बोलता था ना तो वो मुझे वो कर दिया जाता था, तो वो जब पिक्चर रिलीज हुई तो

0: पहले जब हम देखने जाते हैं शोज थोड़े से अटेंड करते हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ काट डालें, कुछ अभी भी ऐड कर डालें,
1: ट्रायल शोज।
0: तो वही जगह जो मैं बोला करता था कि ये चीज़ ऐसी क्यों, ये क्यों, ये आदमी बम्बई में पुलिस वाला है, वो दार्जिलिंग क्यों आएगा, ऐसा कुछ अजीब से बोलते थे पॉइंट मेरे, वो थिएटर के पॉइंट थे, मतलब मीन में।

0: और मैं ऐसा थोड़ी देर में बोलता था। एक चीज हुई, उन्होंने हाथ पे लिखा, मेरा बाप चोर है, लिखा बच्चे के हाथ में।
1: हाँ
0: मैंने 15 हफ्ते श्योर ऐसा बोलता था मैं। तो सब जितने लोग थे मेरी तरफ लुक करते थे कि चमचागिरी कर रहा है।
1: हाँ
0: फिर आगे कुछ गया, एक और हाईलाइट आई,
1: हाँ
0: मैं यहाँ बैठा हूँ वो फाइट वाले गोडाउन में बैठा हूँ।
1: हाँ तुम मुझे
0: हाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं यहाँ
1: मैं
0: बैठा
1: यहाँ
0: हूँ,
1: बैठा हूँ जी।
0: हाँ समथिंग लाइक दैट। मैंने 25 हफ्ते,
1: आए आए।
0: फिर मुझे मेरे एडिटर साहब ने चुप कराया, रमेश प्लीज निरीक्षण में ये सब मत बोलो, चुप रहो, पहले सुन लो, एंड में डिस्कस करेंगे। ऐसा करते करते मैं 50 हफ्ते तक जा चुका था सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट सुनते सुनते
1: 50 हफ्ते फिल्म
0: चलवा दी
1: जी।
0: अब साहब कास्टिंग की बात आई, राजेश खन्ना की उस डेटे नहीं थी,
1: हाँ
0: और इन्होंने कहा कि भाई ये अमिताभ बच्चन उन दिनों मिलने आया करते थे राजेश जी को
1: जी
0: पालील पे, और मुझे भी कहा करते थे, मेरे को शॉर्ट बुलाते थे, तलवार का
1: हाँ
0: इंग्लिश
1: अच्छा
0: शॉर्ट, शॉर्ट
1: शॉर्ट।
0: शॉर्ट बोलो यार, एक पिक्चर मेरे साथ करें। अब तो
1: हाँ
0: मैं बड़ी बड़ी पिक्चर, फिर इनकी पिक्चर हिट भी हो गई थी वो
1: हाँ जंजीर
0: जंजीर, तो बोला अब तो मैं हिट हीरो हिट हो गया हूँ।
1: हाँ
0: तो यश जी ने ऐसा गुलशन राय से कहा, तो उन्होंने अपना हिसाब से कहा कि यार वो बड़ा हीरो है राजेश खन्ना, वेट ना कर लें, समथिंग
1: हाँ हाँ
0: कुछ छोटा मोटा। सलीम जावेद भी साथ में थे, तो
1: जी
0: हमने कहा लेकिन ये शूट ज़्यादा करता है अमिताभ बच्चन, अगर
1: हाँ
0: आप जंजीर देखें उस हिसाब से ये ज़्यादा शूट करेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मान गए, और इनकी डेटे भी हमको खूब मिल गई अमिताभ बच्चन की। शशि कपूर जो थे बड़े
1: हाँ वो तो बड़े थे लेकिन
0: थे, वो ही था, उनको छोटे भाई का रोल करना था।
1: हाँ
0: अब रोल उनका थोड़ा सा छोटा था इनके कंपैरिजन में, मेन हीरो ये थे। तो जो हम लोग फिल्म वाले जो थे थोड़ी सी कारिस्तानी करते हैं,
1: जी
0: एक दो आदमियों को भेजा गया जहाँ कहीं शशि कपूर शूटिंग कर रहा है।
1: हाँ
0: अरे साहब दीवार की स्क्रिप्ट सुनी, जैसा दीवार का आपका सब्जेक्ट था ना, उससे बेटर रोल है कभी कभी मैं आपका, दोनों पिक्चर यश चोपड़ा कर रहा है, एक खुद के लिए एक गुलशन,
1: गुलशन राय के लिए
0: ऐसा कुछ लोग बोल देते थे।
1: कन्विंस करने के लिए
0: हाँ कोई बोल देता, बीज डाल रहे हैं। कोई भी गया
1: जी जी जी
0: जो अब सीनियर किस्म का आदमी है, जो बोलने में ऐसा ना लगे कि
1: बनावटी है
0: मैसे बनावटी। तो वो साहब फिर शशि जी ने कहा यार तुम मुझे रोल सुनाते नहीं हो, तो उनको रोल सुनाया गया
1: हाँ
0: कि भाई देखिए लेंथ वाइज वो है, पर छोट लो, मैं इनका बड़ा भाई लगू छोटा भाई लगूंगा कहीं, वो ऐसा कर लेंगे, बालों का ये कर लेंगे, उसका ये कर लेंगे। जो यश जी ने कन्विंस किया वो मान गए, ये तुम्हारे पास बड़े अच्छे सीन है। इन लोगों ने भी सलीम जावेद में कहा अगर आपको ट्रॉफी ना मिलेगी हम लाइन छोड़ देंगे, बेस्ट एक्टर का अवार्ड ना मिला, तो उनको मिला,
1: बिल्कुल
0: तो रोल भी मिला उसमें।
2: ये भाई मैं हूँ और ये भाई तुम हो, हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ गया। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
3: मेरे पास माँ है।
0: अमिताभ बच्चन का भी निकलाया तो पिक्चर हमारी सुपर डुपर हिट होगी साहब।
1: और आप इस फिल्म में असिस्टेंट थे?
0: असिस्टेंट नहीं, इसमें चीफ असिस्टेंट हो गया था ना, अभी
1: आप चीफ असिस्टेंट हो
0: अब
1: गए।
0: हो गया सब जगह, जो वो मैंने कहा ना पहली पिक्चर करते करते दाग में चीफ असिस्टेंट का टाइटल मिल गया था मुझे, जो सब काम मेरे ऊपर जब आ गए थे
1: तो सारी चीजें सब
0: सारे उसमें मेरा टाइटल है चीफ असिस्टेंट रमेश तलवार।
1: दीवार में गाने नहीं थे शुरुआत?
0: गाने में शुरू में दो गाने थे, एक नौकरी मिलती है और एक नौकरी छूट जाती है, दो गाने थे उसमें, शशि कपूर और पूनम बिलो, दो ही गाने थे। वो कौन थे उसमें उनकी हीरोइन?
1: नीतू सिंह।
0: नीतू सिंह, बाद में उन्होंने पूनम के साथ भी काम किया, तो इसलिए मुझे शशि कपूर पूनम। हमने ट्रायल किया इनके लिए, क्या होता था जब पिक्चर कंप्लीट हो जाती है तो राजकमल में ट्रायल होता था प्राइवेट, सिर्फ री रिकॉर्डिंग के लिए इनके लिए अपने
1: मंगेश
0: देसाई,
1: री रिकॉर्डिस्ट, बहुत बड़े
0: बहुत बड़े, मतलब लोग उनके मानते थे, उनकी जजमेंट कमाल की थी
1: जी,
0: जो कहते थे उतनी पिक्चर उतनी चलती थी।
1: वाह वाह वाह।
0: और उस ट्रायल में किसी को बुलाया नहीं जाता था,
1: हाँ।
0: अकेले होते थे, और मेरे जैसा कोई एक असिस्टेंट और यश जी खुद, बस उन्होंने पिक्चर देखी, तो जैसे हुए तो हम निकले बाहर, जैसे बात तो करते होते फौरन, कहने लगे भाई पिक्चर तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन 15 हफ्ते से ऊपर नहीं चल सकती।
1: अरे बाप रे।
0: तो यश जी ने कहा क्यों भाई? बोला म्यूजिक नहीं है, हमारी फिल्मों में म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैंने कहा एज इट इज मुझे लगता है 50 हफ्ते तक चलेगी।
1: हाँ वो जो आपने नरेशन के समय
0: वही क्या? तो कहने लगे नहीं बेटा वो थ्योरी वाइज ठीक है, लेकिन इस टाइम पे रिस्क नहीं लेना होता है, अभी भी गाने

तो हम लोगों ने तीन चार गाने रिकॉर्ड किए, तीन गाने और रिकॉर्ड किए। एक डॉक्स पे होता है देवन वर्मा, गेस्ट आर्टिस्ट बुलाएंगे, डॉक्स पे गाना शूट किया, एक और गाना था और एक कवाली।

0: एक जो इनका था देवेंद्र वर्मा वाला, वो लगता है जबरदस्ती घुसाया हुआ है, हम लोगों ने वो काट दिए,
1: कवाली भी काट,
0: लेकिन कवाली हमको पसंद आई थी
1: जी।
0: तो सलीम जावेद को पिक्चर दिखाई, उन्होंने कहा साहब ये कवाली तो इसमें नहीं रह सकती, वो निकाल दीजिए। तो यश जी ने कहा भाई वैसा है मंगेश जी, नहीं नहीं नहीं हम देखिए हम तो ये। अब साहब उस वक्त क्या था, यश जी बड़े भले आदमी थे, गुलशन राय भी बड़े भले आदमी थे, ये ज़्यादा उस बोलते नहीं थे, लेकिन सलीम जावेद सुपर हिट थे उस वक्त
1: जी,
0: और ये बोलते थे, इनका अपनी बात कहलवाते थे और करवाते थे
1: और मनवाते थे,
0: मनवाते थे। तो अब उनके सामने सिर्फ मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा देखिए जावेद साहब, सलीम साहब, मैंने उस टाइम भी आपसे कहा था ये पिक्चर इतनी चलेगी, 15 हफ्ते 25 हफ्ते 50 हफ्ते कहा था, बोले लेकिन चली तो 104 हफ्ते ना।
1: हाँ। क्या बात है।
0: हाँ। तो मैंने कहा चलिए वो सही। हाँ। तो आप, मैं भी ये चाहता हूँ कि ये पिक्चर भी 50 हफ्ते जरूर चले।
1: हाँ।
0: तो आप प्लीज, तो कहने लगे ठीक है हम आपके अगली पिक्चर नहीं करेंगे, गुलशन राय से भी कह दिया और यश चोपड़ा से भी कहा,
1: सिर्फ इस कबाली की वजह से।
0: हाँ, हम फिर अगली, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मत कीजिए, आपको भी बहुत प्रोड्यूसर मिलेंगे, हमको भी बहुत राइटर मिलेंगे।
1: अरे बाप रे।
0: अब ये बात यश जी भी चुप है, गुलशन जी भी चुप है, और मैंने कह दिया ये बात। और देखिए साहब, जैसे हम बाहर निकल रहे हैं साथ में, तो जावेद साहब कहने लगे, रमेश जी बुलाते, रमेश जी आप कैसे इपटा के एक्टर हैं डायरेक्टर हैं, आपने तो हमारे पांव पे कुल्हाड़ी मार दी।
1: ओ
0: कवाली के बदले कवाली मार दी, कुल्हाड़ी मार दी के बदले बोला आपने तो हमारे पांव पे कवाली मार दी।
1: अरे गजब, क्या डायलॉग,
0: ये डायलॉग बोला
1: जी।
0: मैंने कहा साहब मजबूरी है, और फिर बाद में उन्होंने देखा, बाद में माने भी, और अगली पिक्चर उन्होंने हमारे साथ की भी।
1: लेकिन कवाली तो हटा दी थी ना।
0: नहीं हटाई
1: जी,
0: नहीं कवाली नहीं हटाई, रही
1: जी,
0: वो बाकी दो गाने काटे देवन वर्मा के, शुरू में रिलीज से पहले काट दी, कवाली रही। तो वो इस बात पे माने, वो मतलब अंदर से हमारी आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट शुरू हो चुकी थी। अब जब इन्होंने मेरी, मैंने फिल्म कर रहा था तो जमाना के लिए उन्होंने सोचा, जमाना फिल्म के लिए, कि भाई ये फिल्म जो है, ये पिक्चर पहले शायद बना रहे थे मोहन कुमार,
1: हाँ हाँ,
0: प्रेम जी के लिए, और उसमें अमिताभ बच्चन थे और शशि कपूर थे शायद, या कोई और थे, अमिताभ बच्चन शशि कपूर ही थे, और प्रेम जी प्रोड्यूसर, और अनाउंस भी है स्क्रीन में उसके, फुल पेज भी आया था, और नाम कुछ और रखा था
1: जी,
0: ए से नाम रखा था, मोहन कुमार की पिक्चरों का नाम ए से होता था। बाद में कुछ आपस में जो भी होगा, नहीं बनी पिक्चर, इनके पास स्क्रिप्ट थी,
1: और आप तो ऑलरेडी डायरेक्टर बन चुके थे।
0: मैं बन चुका था,
1: तब तक तो बसेरा
0: बसेरा आ गई थी।
1: हाँ।
0: बसेरा आ गई थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है, करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए।
1: हाँ।
0: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं, आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ऋषि कपूर इसमें होगा, और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: तो अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिम्पल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी
1: जी जी,
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में।
1: हाँ।
0: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है, ये उनके जहन में था, और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है ख़राब हो चुका था, ख़राब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे, मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।

0: भाई जब आप फिल्म करेंगे और सलीम जावेद की स्क्रिप्ट होगी तो आप सोचिए, डायलॉग नहीं लिखे होते, स्क्रीन प्ले तैयार थे।
1: जी जी,
0: अब तो डायलॉग लिखने हैं, इसमें डायलॉग लिखे होंगे तो फिर आप सोचिए।
1: जी जी जी।
0: तो साहब मैंने कहा फीस क्या देंगे? कहने लगे भाई फीस तो कोई डायरेक्टर हमसे हमारे पास है ऑलरेडी जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए ले रहा है, तो आपको भी वही दे देंगे। तो मैंने कहा आपने हमसे अभी कितने पैसे मांगे थे पिक्चर के? बोले 21 लाख। तो मैंने कहा 21 लाख, 10.5 लाख सलीम साहब के, 10.5 लाख जावेद साहब के, और डायरेक्टर 2-2.5 लाख देंगे तो पिक्चर अच्छी कैसे बनेगी?
1: क्या गजब बात है। फिर
0: तो साहब आप सोचिए। बोले नहीं, हमको 21 अभी मिले नहीं हैं, हम 21 मांग रहे हैं, अभी तक 14 मिले हैं। अच्छा 7 लाख दे दीजिएगा। ये उसमें पार्टनर भी थे उस पिक्चर।
1: अच्छा अच्छा।
0: क्योंकि जो फाइनेंसर था वो इनके पास आया था।
1: हाँ।
0: क्या आप कोई प्रोड्यूसर खड़ा कर दीजिए, आप खुद प्रोड्यूस भाई? तो इन्होंने बाद में खुद प्रोड्यूस भाई नहीं करना चाहा, किसी और जगदीश शर्मा जी को पिक्चर दे दी। लेकिन छत्र छाया इनकी कंपनी, ऐसा कहना चाहता है इनकी पिक्चर। तो मैंने कहा भाई मुझे 7 ही दे दीजिएगा, मैं जाता हूँ। तो बोले आपने कहीं जाना था क्या? कहा आपने मिलकर नाटक की रिहर्सल है, जाइए ना रिहर्सल पर, जाइए ना, फिर क्यों बैठे हैं? थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन करके कुछ ऐसा डायलॉग मार के, एक वन लाइनर मार के मैं भी चला गया। तो अलबत्ता उन्होंने, मैं सागर सर्दी का फ्लैट था जुहू पे,
1: जी
0: टेरेस फ्लैट था, वहाँ कुछ रीडिंग वीडिंग थी वगैरह, सब लोग आए हुए थे। जावेद साहब को पता था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, और जावेद साहब वहाँ पे आए
1: पीछे से।
0: हाँ, थोड़ी देर के बाद, जब मेरे हो गया काफ़ी बाद में, उन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया होगा
1: जी
0: कि ये पिक्चर के लिए बेटर तो यही है अगर ये करे तो। और मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं थी, सच बात यह है।
1: हाँ।
0: प्राइस इसलिए बोला था कि मेरी ज़्यादा इच्छा नहीं थी।
1: करेक्ट है।
0: और मैंने बाकी पिक्चरें जो की थी वो परसेंटेज पे की थी कि पार्टनर बना लो। अपना बसेरा में भी 1/3 पार्टनर था मैं, और यजी ने भी मुझे सवाल में 1/3 पार्टनर बना लिया था
1: जी।
0: और ऐसा ऐसा इस तरह का काम, और जो आएगा खा लेंगे आपस में ऐसा। तो आए और उन्होंने कहा भाई प्राइज लेना तो कोई आपसे सीखे।
1: ओए ओए।
0: मुझे समझ नहीं आया। अब मैं थोड़ा सा उदास था कि वो मान गए, और थोड़ा सा ये था कि मेरे टाइप की पिक्चर नहीं है।
1: हाँ।
0: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
1: जी,
0: ये पिक्चर अच्छी बने। और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
1: अरे बाप रे।
0: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
1: ये लो।
0: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
1: हीरोइनें भी हैं,
0: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए।
1: अब
0: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी।
2: रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत आपने सुनी। ये बातचीत अभी अधूरी है, बातचीत जारी रखेंगे अगले हफ्ते उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जुबैर खान।
3: उजाले उनकी यादों की। उजाले।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा तथा निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकल, यानम और माहे में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी आई को दृष्टि मिशन के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके जुनून का प्रमाण है। उन्होंने गैलेक्सी आई के संस्थापकों और पूरी टीम को बधाई दी है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के शाहदरा स्थित विवेक विहार इलाके में हुए अग्निकांड में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश पहली बार बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध कराता है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को एक नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। IPL क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 166 रन का लक्ष्य दिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेट

0: समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी राउरकेला प्रसार होगा थोड़ा कार्यक्रम संपर्क में कतोटी सूचना। प्रथम चलित अधिवेशन संपर्क संध्या 6:10 हिंदी भक्ति गीत संबलपुरी गीत शुणे संध्या 6:30 कंठशिल्पी क्षमानिधि बढ़ी जनजीवन संवाद संध्या 6:55।

0: चिन्मय विद्यालय इंग्राजी माध्यम छेंड राउरकेला स्वतंत्र आदर्श स्वतंत्र चिंताधारा और स्वतंत्र शिक्षा प्रदान करुथिबा एक अनन्य शिक्षानुष्ठान चिन्मय सेवा ट्रस्ट द्वारा परिचालित स्वामी चिन्मयनंदनक आदर्श से अनुप्राणित आईसीएसई बोर्ड स्वीकृति प्राप्त 34वें वर्ष रे पदार्पण करिथिबा उत्तम मनुष्य गढ़ुथिबा एक अग्रणी शिक्षानुष्ठान जेउठी सर्वांगीन शिक्षा उचित मार्गदर्शन सह पिलांक सुरक्षा सुस्थता और सर्वांगीन विकास को दिया जाए प्राथमिकता शत प्रतिशत पास हार सह श्रेष्ठ फलाफल हेउचि जहार अनन्य सफलता जेउठी 2026-27 शिक्षा वर्ष पई केजी श्रेणी रु नवम श्रेणी एवं विशेष भाव रे एकादश विज्ञान और वाणिज्य श्रेणी पर्यंत चलीचि एबे नामलेखा एवं समस्त श्रेणी रे सीमित स्थान रहिचि ताहाले आउ डेरी काहे कि केजी रु नवम और एकादश श्रेणी रे नाम लेखाइबा पई विद्यालय रो कार्यालय सह आज ही जोगाजोग करंतु समय सकाळ 8:00 रु दिन 11:00 मोबाइल नंबर 7873819988 एवं 9437109907 आउ थरे कहि दउछि मोबाइल नंबर 7873819988 एवं 9437109907 चिन्मय विद्यालय सफलतार अनन्य शिक्षालय
1: आपणक व्यवसाय उन्नति आणिया पई आकाशवाणी सहयोग नियंतु आकाशवाणी राउरकेला केन्द्र रे विज्ञापन बुकिंग पई आज ही जोगाजोग करंतु ए टेलीफोन नंबर रे 7008248758 टेलीफोन नंबर आउ थरे कहि रखुछु 7008248758 उपभोक्ताक पाखरे पहुंचिया पई सबुठ सुलभ एवं सहज माध्यम हेउछि आकाशवाणी आकाशवाणी राउरकेला केन्द्र रे विज्ञापन बुकिंग पई डायल करंतु ए टेलीफोन नंबर को 8249809672 टेलीफोन नंबर आउ थरे कहि रखुछु 8249809672 कंठशिल्पी क्षमानिधि बड़ी गीत रचना रास विहारी उर्मा।

0: सोसीगा
1: होए का दादा
0: जुहार का जुहार
1: जुहार जुहार दादा जुहार जुहार
0: अरु आमोर चासी भाई बहन मन के भी
1: जुहार
0: अरु स्वागत आजिर आमोर किसान वाणी कार्यक्रम नो
1: अरु आमोरी किसान वाणी कार्यक्रम केंद्र कृषि मंत्रणालय भारत सरकार तरफ नु प्रसारण करा जाय सिगा दादा
0: होय क्या होय
1: हेले दादा आमे जदी कहमा जे केन जिनिसटा बेसी कर पसंद खाना पीना उपरे हो पिनभार उड़भार उपरे हो जाय कथा उपरे हो तो आमे केन गुटे जिनिस के इटा नमोर पसंद बोलिकर कहि नि पारु
0: बिल्कुल गा केनता कोहमा कहत
1: हेटा परे आमके तो बहुत किछि पसंद लागसी है आरो हेंती भी दादा ई मनुष्य जीवन किनी आराम जह करी खुजसी
0: बिल्कुल
1: जेन ठाने आज आराम मिलु छे सेटा भल लागु छे हेले सेठाने जदि काल के टिके असुविधा हुए बोले इटा मन के नै गला हमर
0: ठीक कहु छो गा ठीक कहु छो जनता की जेन शीत मासर कथा देखबो
1: होय होय होय
0: जते बेले ठंडा लागसी
1: होय
0: हाथ गोड़ एकदम केंता केंता लागि जाउथिबा
1: होय होय होय
0: आरो ठंडा थी तमे जेन साइकिल की बाइक चलाई नहीं पारुथिबो
1: होय
0: आउ चालबो बेले जदि तुमको जेन चप्पल पिंधि करि जिबार पसंद लागसी विशेष करि
1: होय होय
0: बा सैंडल पिंधि करि तमे जिबा आसबार करसो हेले सेतकी बेले बाध्य होइ करि तुमके ई जेन ठंडा नु बचबार लागि जूता मुजा पिंधबार लागि पड़सी
1: हां
0: सेतकी बोले तुम्हें कहबो जे खरा मास थीता बोले खरा लगता हेले ई सब पिंधवार लागि नि पड़ता
1: आरो जते बेले खरा मास इटा आसी गला यहादे हमें काना के सुर करू छु कहत शीत मास केते भल थिला बढ़िया पूरा एकदम उड़ी उड़ा कर सुई पारु थला आराम से जेनो हेले रही पारु थला आरो खाना पीना भी बढ़िया बढ़िया मिलु थला से कथा के यहादे का सुर करू छु हेले ई खरा मासर से खराटा भी हमके सेतकी बेले स्वाद लागु थला आरो यहादे से खराटा 20 बेर लागु पूरा चिए जोचे बोल करे यहादे से शीत मास के सोर करू छु
0: होय
1: आरो सटा भल बोलू छु आर खरा मासटा आमके पूरा एकदम के से बंदूक यहादे का पूरा रेडी कर रखी छे मारी देबा लेखे लागू छे
0: ठीक कहो छोगा आरो जतकी बेले बेसी गरम लागू छे
1: होय
0: आरो खरा थी तो बाहरी नहीं हबार
1: बिल्कुल नहीं
0: हेतकी बेले आमे इजेन कूलर चलाऊ छु
1: होय होय होय
0: कि इजेन पंखा हवा खाऊ छु सही थरे फिर हमके शांति नहीं लगबार
1: दादा
0: आजकल तो जेन हिसाब रे खरा बढ़ला नो हमें जेन गछ मूले बसु छु हेले फिर से ठाने फिर शांति नहीं लगबार
1: तो
0: हेत की बेले भाबु छु ई शीत मास रे जते बेले हमकु इजेन टिके थका मारबार लागि भाबु थिलु दिन बोलिया सेत की बेले कंबल गुटे ढापलो माने एकदम सुई पड़लो आराम से गुटे घंटा हेंता लागसी
1: होय होय होय
0: किंतु सब मासर तो किछि ना किछि खूबी अछे
1: हां बिल्कुल अछे दादा आरो ई सोमिया थी आमे घाघानी कहेसु के वर्षा टिके हेले मारता बोले ई खरा ठानु टिके हेले निस्तार पायता मुली करी तो सेटा मजा मजा थी तो हे ही जैसी है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हेले शीत मास के आर यहा गानी परमा के
0: नी तो आनी परू
1: एतकी कथा जन हेला इटा तार सार इटा है जे दादा सब ऋतुर सब सोमियार खासियत अछि
0: बिल्कुल
1: खरा भी हमके बहुत दरकार देखो जते बेले आमे चासबास करसु शीत मास रो कथा जदी कहमा जल्दी कर बिहन माने गोजानी दिए सेति लागि सदा के पोल ढापो कि अगले नु गोजा करो आर लोगो बोल कर कोहा हैसी
0: बिल्कुल
1: हेले से कथाटा जदी ई खरा मासे देखमा बोले बिहन माने जल्दी कर गोजा हैसी
0: बिल्कुल
1: आर वर्षा मासर कथा तो कहनी सेरा तो चासबासर सोमिया ही है तो सबु मासर सौंदर्य अछि इहा देखा खरा दिनटा हमके इथि लागि डरौ छे जे ओतका करी खरा होउ छि नेहले ई खरा मास हमर छुआ बेले जते बेले आसु थिला गा दादा केते भल लागु थिला कह
0: होय बहुत भल लागु थिला काई करे कि ई सोमिया थी आमे जते बेले स्कूल माने छुट्टी हे जउथिला सेतकी बेले सभे प्लान करथुलु कि आमे ई जेन 8 कि 9 बेले घरु बाहर मा आ सीधे एकदम जंगल आड़के जिमा आरो सेठाने जेन विभिन्न प्रकार फल मूल माने हेथिसी से मान के आमे कलेक्शन करम विशेष करी तो ई जेन आम रो कथा कहू छे मु जेन खोटा आम टा आमे तुलमा ताके आमे छिलमा आउ नून मिर्चा धोरी करी जाइथिमा आरो सेटा के गुटे घंटा 2 घंटा सेठाने बसी करी आमे खायमा खाई सारला बादे फेर आसो ई जेन बोंधाड़के सेठाने डेगी डेगी करी गाधी करी फेर माने 2-3 घंटा बादे जीवो बारटा गुटे हे जेथिबा यारे घरे लोग खोजु थिबे किंतु आमोर सेरे मजा होथिला
1: हो दादा तो खरा मासे नानादी फल माने मिलु थिला लेती माने केनता खायबार के स्वाद है कहो ହେଲେ ଯେନ୍ ଜିନିଷ ବି ଟିକେ ଅତି ହେଇଯାଏସି କିନି ଦାଦା, ସେଟା ଭଲ ନେଇ କହେସନ୍। ଯେନ୍ତା ଲେମ୍ବୁ ଜହ କରି ଚିପି ଦେଲେ ସେଟା ପିତା ଲାଗ୍ସି, ତ ସେଟା ଖଟା ବି ନେଇ ଲାଗେ, ସ୍ୱାଦ ବି ନେଇ ଲାଗେ, ଆର୍ ପିତା ଲାଗିଲେ ଆର୍ ଭଲ ଲାଗ୍ବା କେ,
0: ଭଲ ନେଇ ଲାଗେ।
1: ତ ସବୁ ଜିନିଷଟା ସବୁ କାମଟା ତାର ଲିମିଟରେ ହେଲେ ଯାଇକିରି ଭଲ ହେ, ନହେଲେ ଇ ଖରା ମାସର ହେଲେ କମ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛେ କେଁ ଦାଦା। ଦେଖ ନ ଇ ବାଟେ ଘାଟେ ଦେଖ ଯେ କେତେ ରକମର ଫୁଲ ମାନେ ସବୁଆଡେ ହେଇଛି,
0: ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ,
1: ଆର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛ ମାନକେ ନାନାଦି ରକମର ଫଲ, ସେଟା ମାନେ ପାଚିଲେ ଆମେ ଏକା ତ ଖାଇମା
0: ହଇ। ହେଲେ ଇଟା ଯଦି ଖରା ମାସ ହି ନେଇଥିତା
1: ହଇ
0: ବୋଇଲେ ଇ ସବୁ ତ ନାଇ ହେଇ ପାରତା,
1: ବିଲକୁଲ ନାଇ ହେତା।
0: ଯେନ୍ତା କି ମୁଇଁ ଆମର କଥା କହିଲି, ହେ ବାଗେର ଇ ବଛର ଆମେ ଦେଖମା ବୋଇଲେ ଇ ଯେନ ଲିଚୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଫଲିଛେ, ଆରୁ ସେ ବାଗେର ଇ ଯେନ କେନ୍ଦୁ ଫେର ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛେ। ତ ଇ ସବୁ ଇ ସିଜନ ଥି ହେସି, ମାନେ ସେ ଖରା ଦରକାର ହେଲେ ଯାଇକରି ଇଟା ହେବା।
1: ବୋଇଲେ ବିନା ଖରା ଶୀତ ଆର ବର୍ଷା ଏତକି ଯଦି ନେଇ ହେଲା ବୋଲେ ଆମର ଚାଷବାସ ନେଇ ହୁଏ। ଆରୁ ଚାଷବାସର କଥା କାଁ କହିମା ଦାଦା, ଆମର ଜୀବନଟା ବି ନେଇ ଚଲିଏ। ଧରି ନିଅ ଏହାଦେ ଖାଲି ଖରା ହଉଥିବା ଆରୁ ବର୍ଷା କି ଶୀତ ମାସ ନେଇ ହେବା ବୋଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚମା କେ,
0: ନେଇ ବଞ୍ଚୁ।
1: ହେନ୍ତା ନ ଖାଲି ଶୀତ ମାସ ଥିବା ଆରୁ ଖାଲି ଶୀତ ଲାଗୁଥିବା ବୋଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚମା କେ,
0: ନେଇ ବଞ୍ଚୁ।
1: ଆମକେ ତ ଖରା ବି ଦରକାର, ବର୍ଷା ନେଇ ହେଲେ ଚାଷବାସ ହେବା କେ, ଆମର ଇ ନଏଦ ନାଲ ଥି ପାଏ ନାଇବା କେ,
0: ନେଇ ଆସେ।
1: ତ ସବୁ ଋତୁର ମହତ୍ଵ ଅଛି,
0: ବିଲକୁଲ। କିନ୍ତୁ ଇଠାନେ କଥାଟା ଇଟା ହେଲା, ତମେ ଯେନ୍ତା କଥାଟା ପକାଇ ହେଇଥିଲ ଯେ ସବୁଟା ଯଦି ବେଶୀ ହେଇଯିବା ହେଲେ ସେଟା ଆମର ଲାଗି ବହୁତ ହାନିକାରକ ହେ। ଯେନ୍ତା କି ଅତିମାତ୍ରାନେ ଆମର ଯେନ୍ ତାପମାତ୍ରାଟା ବଢୁଛେ
1: ଦାଦା,
0: ତ ଯେନ୍ତା କି ଆମର ଇ ଯେନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଆମକେ କହିଲେନ କି ଇନର ଯେନ୍ ଓଜନ ଲେୟାର ଅଛେ ସେଟା ମାନେ ଛିଦ୍ର ହେଲାନ, ତ ସେ ଛିଦ୍ର ବାଟେ ବା ସେ କଣା ବାଟେ ଇ ଯେନ୍ ଖରାପ ରଶ୍ମି ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି, ସେଟା ଆସୁଛେ। ଆରୁ ଇ ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ମାନକେ ସେଥିରେ ଆମେ ଫେରଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇ ଯେନ୍ ଚର୍ମଜନିତ ରୋଗ ମାନେ ହେଉଛେ, ତ ସେଟା ବେଶୀ ହେଲା ଖରା ହେଇଥିବା ଲାଗି ତ ହେଉଛେ।
1: ହଁ ଦାଦା, ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଚର୍ମ କର୍କଟ।

0: मधुमक्खी पालन से जोड़ना चाहते हैं, वृक्षों की खेती से जोड़ना चाहते हैं और लक्ष्य एक ही है, किसान की आमदनी बढ़ाना ताकि अन्नदाता हमेशा सुखी रहे, आनंदित रहे, लगातार आगे बढ़ता रहे। और इसलिए पिछले साल हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया था उड़ीसा में।
1: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोगदे कहते प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजनार प्रथम पर्यायर 15,808 सड़क 523 सेतु मध्य प्राय समस्त कार्य संपूर्ण कर ओडिशा उदाहरण सृष्टि कर केन्द्र और राज्य सरकार मिलित उद्यम ग्रामांचल गमनागमन को सुव्यवस्थित कर मुख्यमंत्री
0: 2036 सुधा ओडिशा को समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा भाव गढ़ी तोड़ापी आज आम उद्यम आम राज्य सरकार जारी रही। आम जानू ग्रामांचल उन्नति बिना आम समृद्ध ओडिशा के संभव हो पार ना, से ग्रामांचल ये भित्तिमि से रास्ता हो पानी जल हो बिजुड़ी हो ये समस्त व्यवस्था को आज आपण मानकर पहुँचाइबार ये हूँ आम मौलिक दायित्व एवं आम प्रतिबद्धतार सहित कम करुच्छू। ग्रामांचल गमनागम रास्ता सुदृढ़ हो पारे आपण मानकर भितरे रोजगार बढ़ी पार, चाष कम आगे पार, शिक्षार मान बढ़ी पार एवं विशेष स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक लाभवान हो पार। एणु निश्चित भाव आज प्रत्येक क्षेत्र में आम सरकार एक मिशन मोड्रे काम कर
1: राष्ट्रर समृद्धि और सामग्रिक विकास रे श्रमिकंकर श्रम निष्ठा और प्रतिबद्धता को सम्मान जणाई चलित मास 1 तारीख रे आंतर्जातिक श्रमिक दिवस पालित हो जाइछि। ए दिवस पालन अवसर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी श्रमिक मानंकु शुभेच्छा जणाइथिले। से कहिथिले श्रमिक समाजर सर्वांगीन उन्नति कल्याण तथा अधिकार सुरक्षा पई राज्य सरकार प्रतिबद्ध बोली श्री माझी कहिथिले।
2: राज्यर श्रमिक भाई बणी मानंकर पई दैनिक 10 टंका हाररे महंगा भत्ता पिछला भाव एप्रिल 1 तारीख ठारु वृद्धि निमंते घोषणा करुछि। यहाद्वारा राज्यर सर्वनिम्न मजूरी अणकुशरी वर्गर श्रमिक मानंकर पाई दैनिक 472 टंका, अर्धकुशरी श्रमिक मानंकर पाई दैनिक 522 टंका, कुशली श्रमिक मानंकर पाई दैनिक 572 टंका ओ उच्चकुशली श्रमिक मानंकर पाई दैनिक 622 टंका को एप्रिल 1 तारीख ठारु वृद्धि करा गला।
1: एतिकरे सेसला समाचार दर्पण प्रस्तुति आंचलिक संवाद विभाग उपस्थापना रे मु सत्यव्रत बेहुरा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी, सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां

0: पूरी कर ली हैं मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी ब्यौरा हमारे संवाददाता से
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा मतगणना 24 मई को की जाएगी निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है ब्यौरा हमारे संवाददाता से
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है वॉल राइटिंग चित्रकारी दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार चेन्नई
0: केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं ब्यौरा हमारी संवाददाता से
3: केरलम के 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रैंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं
4: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है जिसमें सिविल पुलिस सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है पुदुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह
0: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी
5: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है जबकि कोकराझार तिनसुकिया और जोरहाट में दो दो केंद्र तथा नौगांव में 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी उनके सहयोग के लिए लगभग 6,000 काउंटिंग कर्मी और 2,300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है राकेश तोले आकाशवाणी समाचार गुवाहाटी
6: जनादेश 2026
7: असम केरलम तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
6: मतगणना की पल पल की खबर संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
7: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रिक्वेंसी पर सुनिए
6: जनादेश 2026।
0: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
8: आईआईटी मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्स आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल

राम और श्याम फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी। यह है वीर दुर्गादास फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें हैं।

0: लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में वीर दुर्गादास फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। भरत व्यास की ये रचना थी और एसएन त्रिपाठी की तर्ज। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आईं फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
3: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
1: 1981 बसेरा।
4: जहां पे सवेरा हो बसेरा वही है।
1: 1984 दुनिया।
3: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का बंजारा।
1: 1993 फिल्म साहिबा।
3: कैसे जियूंगा मैं।
1: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
4: नजरों से कह दो प्यार।
1: उजाले उनकी यादों के 10 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: काजल है
0: आपके लिए कार्यक्रम में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं बहुरानी फिल्म का ये गीत।

बहुरानी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और सी रामचंद्र ने इस गीत की धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम से सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम डोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

वो अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

सैयद का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की माँ थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में, जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश-ए-हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू हो

जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था, वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दन बाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जानी मानी निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। क्योंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया। बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके चार बरस बाद नरगिस का

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही।

श्री 420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा।

आह के बाद धुन, पापी और जागते रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में

0: प्यारा प्यारा।
1: राज कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया।

नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।

महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में ये फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली।

दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी सुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रही दत्त साहब कहाँ हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं हैं। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

सन 1958 कार्लोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी। एक अभिनेत्री इस दुनिया से

पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है। नरगिस एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थी अभिनेत्री नरगिस की, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: आकाशवाणी राउरकेला गीत गजल क्रम आसंत शुणा गजल कंठशिल्पी जगजीत सिंह शिल्पी कंठरे प्रथम शुणा नदीम परमारंक रचना।

0: चिन्मय विद्यालय इंग्राजी माध्यम छेंड राउरकेला स्वतंत्र आदर्श स्वतंत्र चिंताधारा और स्वतंत्र शिक्षा प्रदान करुथिबा एक अनन्य शिक्षानुष्ठान चिन्मय सेवा ट्रस्ट द्वारा परिचालित स्वामी चिन्मयानंदन आदर्श से अनुप्राणित आईसीएसई बोर्ड स्वीकृति प्राप्त 34वें वर्ष रे पदार्पण करथिबा उत्तम मनुष्य गढ़ुथिबा एक अग्रणी शिक्षानुष्ठान जेउठी सर्वांगीन शिक्षा उचित मार्गदर्शन सह पिलांक सुरक्षा सुस्थता और सर्वांगीन विकास को दिया जाए प्राथमिकता शत प्रतिशत पास हार सह श्रेष्ठ फलाफल हेउछि जहार अनन्य सफलता जेउठी 2026-27 शिक्षा वर्ष पई केजी श्रेणी रु नवम श्रेणी एवं विशेष भाव रे एकादश विज्ञान और वाणिज्य श्रेणी पर्यंत चलीछि एबे नामलेखा एवं समस्त श्रेणी रे सीमित स्थान रहिछि ताहाले आउ डेरी काहे कि केजी रु नवम और एकादश श्रेणी रे नाम लेखाइबा पई विद्यालय कार्यालय सह आज ही जोगाजोग करंतु समय सकाळ 8:00 रु दिन 11:00 मोबाइल नंबर 7873819988 एवं 9437109907 आउ थरे कहि दउछि मोबाइल नंबर 7873819988 एवं 9437109907 चिन्मय विद्यालय सफलतार अनन्य शिक्षालय
1: आपण मेडिसिन स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट थायराइड स्पेशलिस्ट पाखरे चिकित्सित हेबाकु चाहुचंती कि तेबे अभय क्लिनिक को निश्चय जाय 45 वर्षर अभिज्ञता सह रिटायर्ड मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हरदीप सिंह को साक्षात करंतु अभय क्लिनिक डीएवी स्कूल लेन बिश्रा रोड राउरकेला मोबाइल नंबर 9861088844
0: चिन्मय विद्यालय ओडिया माध्यम सेक्टर 7 राउरकेला चिन्मय सेवा ट्रस्ट द्वारा परिचालित स्वामी चिन्मयानंदन आदर्श से अनुप्राणित ओडिशा बोर्ड स्वीकृति प्राप्त दीर्घ 47 वर्षर एक सुनामधन्य शिक्षानुष्ठान जेउठी सठिक शिक्षा सठिक मार्गदर्शन सह पिलांकर सुरक्षा सुस्थता और सर्वांगीन विकास को दिया जाए प्राथमिकता आउ 1983 मसीहारु 2025 मसीहा पर्यंत शत प्रतिशत पास हार होउछि जहार अनन्य सफलता जेउठी 2026-27 शिक्षा वर्ष पई नर्सरी रु नवम श्रेणी पर्यंत चलीछि एबे नामलेखा आउ चिन्मय अमृत महोत्सव 2026 पालन अवसर रे शिशु बाटिकारु नवम श्रेणी पर्यंत नामलेखा निमन्ते प्रथम 100 जन प्रार्थीक पई रहिछि मध्य विशेष रियायतिर सुविधा ताहले आउ डेरी काहे कि नर्सरी रु नवम श्रेणी पर्यंत नाम लेखाइबा पई विद्यालय कार्यालय सह आज ही जोगाजोग करंतु समय सकाळ 8:00 रु दिन 11:00 मोबाइल नंबर 9238683735 एवं 7008173085 पुनी थरे 9238683735 एवं 7008173085 चिन्मय विद्यालय सफलतार अनन्य शिक्षालय।

सुंदरी गर्भ दस मास दस दिन संपूर्ण हो गला जेने आज्ञा सुंदरी झीटे जन्म हो सुवर्ण कटारी आनी नाभि को काटिदे चंदन काष्ठ से अंतुड़ी जाली पांच दिन पंचुआती दिवस आज्ञा पालन कले षष्ठी दिन षष्ठी पूजा आयोजन कर एक दिन हो गला जेने आज्ञा उत्तम ब्राह्मण टीए डाक राजा आज्ञा झीर नामकरण करदे पंडिते झीर नाम हेला आज्ञा सावित्री देवी येने सावित्री झीओ आज्ञा राजा राणी को कोलोरे सुंदर भाव रे आज्ञा वर्धित होवा पई लागिसंती केमिति वर्धित होचंती आमरो आज्ञा कवि लेखिले आज्ञा ओ अनुप्रास रे आज्ञा ब्रजनाथ जेना सुंदर पद टिए लेखिले अरे

पंडित मंडली झियो टाकु 8 वर्ष हेले गौरी झियो बोली आ संबोधन करा जाए आ झियो टाकु जते बेले 9 वर्ष हो जाए सेई समय रे रोहिणी झियो बोली आ संबोधन करा जाए 10 वर्ष हो गले आ कन्या बोली संबोधन करा जाय थाए झियो टाकु 10 रु जदी ऊर्ध हो गला पंडिते रजस्थला झियो बोली संबोधन करा जाए जौवन प्राप्त करिछे आज्ञा आमर से सावित्री झियो राजा आज्ञा तांकर सिंहासन रे बसिछंती जेने ब्रह्मांकर नंदन हेले आज्ञा देवसी नारद कलह प्रिया नारद करिछंती कोन जेने जाउछंती आज्ञा हस्तपति राजांक घरे केमिति जाउछंती बाबू रे

जानरे चढ़ी दे बरसी नारद जाके आगे राजा पाखरे हाजर हेले कहले हे राजा तमरो जो जौवन

ଜନ୍ତୁପତି କୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरल में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय

0: अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी राउरकेला आजर अधिवेशन शेष करने पूर्व आसंताली प्रसार होगा कार्यक्रम संपर्क में कतोटी सूचना भक्तियुक्त कार्यक्रम वंदना सका 6:05 श्री रामचरित मानस सका 6:35 आमर स्वास्थ्य